सुप्रभात। एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, वन की अग्नि चंदन के वृक्ष को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का अहित करते समय अच्छे या बुरे व्यक्ति में अंतर नहीं करते। तात्पर्य ये कि हमें दुष्ट प्रकृति के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे अवसर मिलने पर सिर्फ हानि ही पहुंचा सकते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज 15वां भाग प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं सर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनिएगा सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा प्रसून जोशी पर, आलेख एवं सर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

सुबह 10 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेगा, दिन में 12:05 से सुरीला सफर दोपहर 1 बजे से सुनवाएंगे आपको। त्रिवेणी दोपहर 2 बजे से और सदाबहार नगमे प्रोग्राम का वक्त होता है 2:30। सखी सहेली ये कार्यक्रम सुन सकेंगे 2:03 से, 4:00 से पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता कंवल जीत से सविता बजाज की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। छाया गीत का पुनर्प्रसारण होता है 5:00 से, 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा 6:30 से, 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा 7:00 से, 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8:00 से आपको सुनवाएंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी बेढब पड़ोसी, लेखन मोहम्मद शफी का, निर्देशन संतोष जोशी का। चितलोक सुनेगा रात्रि 8:15 से, आपके लिए सुनवाएंगे आपको रात 9:00 से।

छाया गीत ये कार्यक्रम सुन सकेंगे आप रात 10 बजे से। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से, और रंग तरंग सुनिएगा रात 11 बजे से।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है? रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बल रूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके? यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है? शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता? इन भुजाओं को देख, जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

0: श्रोताओं नमस्कार। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला के इस अंतिम कड़ी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का।
2: नमस्ते
1: शकुंतला जी। इस अंतिम कड़ी में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो संगीत आज के दौर में गाया जाता है, जो संगीत प्रचलित है, उसमें ऐसे माहौल में शास्त्रीय संगीत का घरानेदार जो संगीत है उसका क्या भविष्य आप देखती हैं?
2: आज के आधुनिक युगों में संगीत की अनेक शैलियों का विकास होने के बावजूद भी
1: जी,
2: घराना परंपरा का महत्व आज भी अक्षुण्ण और अखंड बना हुआ है। एक संगीत घराना यानी सिर्फ गायन की एक शैली नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध सांगीतिक परंपरा, सौंदर्य दृष्टि और गुरु शिष्य परंपरा का जीवन स्वरूप है
1: जी।
2: है ना? प्रत्येक घराना अपनी विशिष्ट गायकी, स्वर विन्यास, राग विस्तार तथा सौंदर्य बोध के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। ये अलग पहचान रखते हुए एक कलाकार विभिन्न घरानों का अध्ययन और श्रवण अवश्य कर सकता है, वहाँ कोई रोकता नहीं है, जिससे उसका संगीत दृष्टिकोण व्यापक होता है, मान लिया। किंतु किसी एक घराने की परंपरा, एक ही घराने की परंपरा में विविध और विधिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी गायकी में विशिष्टता, शास्त्रीयता और एक स्वतंत्र सांगीतिक व्यक्तित्व विकसित होता है, और यही घराने की वास्तविक देन है, ऐसा नहीं लगता आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज आवश्यकता है इस बात की कि घराना परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। इससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम परंपरा में फिर एक बार जा रहे हैं तथा विश्व भर में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ होगी ही होगी, क्योंकि आज किराना घराना विश्व भर फैला हुआ है
1: जी।
2: इसका कारण क्या है? एक घराने में जो गायक पैदा हुए वे प्रतिभावान थे
1: जी,
2: लेकिन उसके साथ भी हर एक पीढ़ी में एक एक गायक कलाकार एक ऐसे बन गए कि ये परंपरा और उसकी जो गान शैली वो अच्छी तरह से आगे लेके जा सके। विभिन्न घरानों का अध्ययन कलाकार के लिए उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। किंतु किसी एक घराने की परंपरा और साधना अगर आप करते हैं तो उसकी गायकी में एक विशिष्ट शैली, अनुशासन और अलग पहचान विकसित होती है, और यही घराना परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसे मुझे लगता है। जयंत जी, हमारे किराना घराने के महान आचार्य और कलाकारों ने अपनी साधना तथा संगीत के माध्यम से इस परंपरा को विश्व भर प्रतिष्ठित किया है
1: जी।
2: आज हमारा भी दायित्व है कि हम इस अमूल्य सांगीतिक विरासत का सम्मान करें, उसका संरक्षण करें, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाएं, ताकि भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये गौरवशाली परंपरा आने वाले समय में इसी प्रकार सुरों की मधुरता के साथ निरंतर प्रवाहित होती रहे
1: जी।
2: इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है आज के इस श्रृंखला का हम विराम
1: समापन करेंगे
2: और
1: जैसे संगीत की बैठकों में अंतिम राग गाया जाता है वो भैरवी होता है तो क्या हम
2: अच्छा,
1: भैरवी की कोई बंदी सुनेंगे?
2: बहुत ही फेमस ठुमरी दादरा जो समझो,
1: हाँ।
2: बेगम अख्तर, बाद में शोभा गुरुटू, बहुत सारे ठुमरी गायकों ने गाई है
1: जी,
2: और छोटी सी गायिका मैं भी हूँ, मुझे भी लगाए गाकर लोगों तक पहुँचाए।
1: क्या बात है?
2: हमारी अटरिया
1: स्वागत है।
2: चढ़ जाओ पाई दाना अजरे तमरे मध्य में।

0: शकुंतला जी, इसी के साथ हमारी श्रृंखला का आज यहाँ समापन हो रहा है और विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और संगीत सरिता के सभी सुनने वालों की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आपको तबला संगत कर रहे थे रोहिदास परब जी, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे ऋषित होनावरकर जी, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vbsmumbai पर जरूर हमें बताएं।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया की आवाज़ में प्यार की जीत फिल्म के गाने के साथ। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हुसनलाल भगतराम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं शमशाद बेगम और मुकेश की। फिल्म का नाम अनोखी अदा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओ लीजिए अब सुनिए अंदाज फिल्म से ये गाना, मुकेश की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। 9772097720

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भोले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में जिद्दी फिल्म का गाना।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं चंद्रलेखा फिल्म का गाना। इसे गाया है उमा देवी और मोती ने, भरत व्यास ने लिखा इसे और संगीत से संवारा एस राजेश्वर राव ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शमशाद बेगम, मुकेश और साथियों की आवाजों में मेला फिल्म से शकील बदायनी है, गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

खेतों से पर्वत पर आकर, खेतों से पर्वत पर आकर जीवन जोत गाले, जीवन जोत गाले। दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ बोले कुछ।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म के गाने के साथ राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: श्रोताओ, हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म से हजरत जयपुरी हैं। गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

लीजिए अब सुनिए मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में गुलशन बावरा का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है विश्वास।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में महल फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में एक फूल दो माली फिल्म का गाना। प्रेम धवन हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: अब आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ, आगे दीजिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी की मनोरंजन सेवा विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी

0: मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
6: Given a choice, a judicial officer,
7: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नवभारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर

तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार ना हों, या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: अरे गजब भया रे भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा काजी है हाय, मौका मिले तो भगवान भेज खाए।
0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए। हाय हाय हाय हाय, कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में जूते

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना मुश्किल बनता जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए एक ही विषय की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर यहां से वहां जाना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में टेक्नोलॉजी काम आती है।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131, 132

0: आदिश मार्केट जीवनार्जियन कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देखकर ही खरीदें।
1: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
2: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। 9772097720।
3: कार्यक्रम चित्रलोक, सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं अग्निपथ फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया अजय ने। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार, संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रेखा भारद्वाज की आवाज़ में डेर इश्किया फिल्म का गाना। इस गाने में नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में, गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज ने बनाई है तर्ज।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए नीलेश मिश्रा का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है कार्तिक के, फिल्म का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

दोस्तों, आज है दूरदर्शन दिवस, यानी आज के ही दिन 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा का शुभारंभ दिल्ली में हुआ था। दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ शिक्षा, सूचना और सामाजिक जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाई गई, शैक्षिक कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया और स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर जन जागरूकता उत्पन्न की गई। स्पष्टतः राष्ट्र निर्माण में दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सभी को दूरदर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं निकिता गांधी की आवाज़ में बागी 3 फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो आप जानते ही होंगे। हमारा लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, और ये मानवतावादी सिद्धांत ही तो हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्य भी सम्मिलित हैं। आज का दिन पूरे विश्व के लोकतंत्रों के लिए और विशेषकर प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए लोकतंत्र की इस बात को आगे बढ़ाते हुए और चित्रलोक

0: चित्रों का युग में आपने सुने नए फिल्मी गाने। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथॉन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई, उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस जनादेश से साफ हो गया है कि जनता डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास नीतियों का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार के हर वर्ग की सेवा और खुशहाली के इरादे को मजबूती मिलेगी।

0: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग को इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली थी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। 17 सितम्बर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका को छोड़कर शेष सभी 305 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की लोकसूचना आज जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 बजे अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 और 22 सितंबर को चुनाव होगा। आज और कल अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। स्थगित अध्यक्षीय चुनाव वाले 4 निकायों में वोटों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। निकाय चुनाव परिणामों पर और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत 2 चरणों में हुए इन निकाय चुनावों के परिणामों के साथ ही प्रदेश में शहरी राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। 309 में से 85 निकायों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। 46 निकायों में कांग्रेस बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में है। 12 नगर परिषद में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। बाकी 177 निकायों में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, जिससे बोर्ड गठन में निर्दलियों और अन्य दलों के पार्षदों की अहम भूमिका रहेगी। इन नतीजों में कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों को हार का सामना करना पड़ा। जयपुर में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और बीकानेर की पूर्व महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित चुनाव हार गईं।
0: भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस मीट का आयोजन किया गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल मीट की अगुवाई करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त मनीषा अरोड़ा भी BIP और RICO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीट में शामिल होंगी। इसके तहत विभिन्न प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद, सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी। इस दौरान ओडिशा के प्रमुख उद्योग समूहों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों के साथ खनन, धातु प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, वस्त्र और परिधान तथा पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में साझेदारी के लिए बैठकें होंगी। गौरतलब है कि प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले साल से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। इसी पहल के तहत राज्य सरकार विभिन्न शहरों में उद्योग जगत से सतत संपर्क और संवाद को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में गौवंश को लंपी बीमारी से सुरक्षित रखने और इसकी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। वहीं गौवंश में संक्रमण की रोकथाम के लिए आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से पशु मेलों और हाटों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने कल जयपुर में पशुधन भवन में इस संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लंपी रोग की वर्तमान स्थिति, टीकाकरण और घर घर चलाए जा रहे सर्वेक्षण अभियानों की जानकारी ली। श्री भाले ने अधिकारियों को जिला स्तर पर रोजाना स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पहले ड्रोनोथॉन की जैसलमेर के पोखरण में कल से शुरुआत हुई। मानव रहित युद्धक क्षमताओं को नई धार देने के उद्देश्य से 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना के उप प्रमुख वाइस एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। ड्रोनोथॉन 2026 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देना है। ड्रोनोथॉन पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 16 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन के तहत पोखरण रेंज में युवा और काउंटर UAS तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में लाइटरिंग म्यूनिशन, लॉजिस्टिक ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, AI आधारित तकनीक, स्वायत्त नेविगेशन और उन्नत पैलोड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। इन तकनीकों के जरिए निगरानी, लक्ष्य भेदन, लॉजिस्टिक और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस बीच कल राजधानी जयपुर सहित 15 शहरों में पानी बरसा। झालावाड़ के रायपुर में सबसे ज्यादा 3 इंच बारिश दर्ज की गई। उदयपुर के कोटड़ा में भी करीब 7 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद में भी बरसात का दौर चला। बाड़मेर जिले के सेड़वा और धनाऊ इलाके में कल शाम कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी और उमस का असर बना हुआ है।
3: मॉनसून के दौरान कम बारिश के चलते भीषण गर्मी और उमस का दौर बना हुआ है। खेतों में समय पर फसलों को पानी नहीं मिलने के कारण अधिकांश फसलें भी झुलस रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से फसलों में हुए खराबे की विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। बरसात नहीं होने के कारण जिले में सिंचित करने वाली नहरों में भी पानी काफी कम है। ऐसे में सिंचाई विभाग की ओर से भी आगामी सीजन में किसानों से कम पानी की पैदावार वाली फसलों की बिजाई करने की अपील की गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी इलाके के मनसा गांव में बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए कोटड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। जयपुर में मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से गाजे बाजे और लवाजमे के साथ ये शोभा यात्रा निकलेगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी। यातायात पुलिस की ओर से शोभा यात्रा को देखते हुए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और बदलाव प्लान जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी, विवादित लेनदेन और मनी म्यूल खातों से निपटने के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार किए गए इस मसौदे के तहत साइबर ठगी की जांच के नाम पर पूरे खाते को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने के बजाय संदिग्ध राशि को ही रोका जाएगा। बैंकों की ओर से लगाया गया ये अस्थायी डेबिट होल्ड अधिकतम 60 दिनों के लिए वैध होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। भुवनेश्वर में आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन, निवेश, व्यापारिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसलमेर की पोकरण रेंज में हो रहे भारतीय वायुसेना के ड्रोनाथन 2026 में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। और प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी है और आप विविध भारती का जयपुर केंद्र सुन रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है FM रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम।

0: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: 9:11 55 seconds by the studio clock. A very very good morning. Namaskar, aadab hai ji. Welcome to Radio Pink City on 100.3 FM. 15th September 2026 की तारीख, दिन मंगलवार और सब मंगल मंगल हो आपकी जिंदगी में, यही मंगल कामना आपके लिए करती है अनामिका. अच्छा, ट्यूसडे की शुरुआत ना निदा फाजली साहब की मोटिवेशनल लाइंस के साथ करते हैं और वो फरमाते हैं कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए. जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए. दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए. जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए. यूं तो कदम कदम पे दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए. मतलब किसी और से कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम अपने बेटरमेंट पे ही ध्यान दे लें. हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश हो, यानी कि अपनी मंजिलें हों और फोकस अपनी दौड़ पर हो. आज ट्यूसडे स्पेशल मोटिवेशनल बूस्ट में हम मुलाकात करेंगे उनसे जो इन पंक्तियों पे बिल्कुल खरे उतरते हैं. एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया है अपने कर्म क्षेत्र में और जो मकाम हासिल किया है भाई साहब, वो हम सब राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात है. सो बी रेडी फॉर दिस अमेजिंग एंड मेलोडियस कॉन्वर्सेशन. 10 AM ऑनवर्ड्स गुनगुनाते लम्हे, देन 11 AM ऑनवर्ड्स ग्लोबल जर्नी में एक ऐसी सिटी की सैर जहाँ की नेचर, ब्यूटी और वाइब्स सब कुछ बिल्कुल ड्रीमी है. लेकिन सबसे पहले मोटिवेशनल बूस्ट इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.

0: It's 9:16 and 50 seconds by the studio clock. और आइए अब सुनते हैं हमारा Tuesday special motivational boost powered by Babylon Hospital, Raja Park, Jaipur.
1: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास. नन्हे कदमों से माँ की गोद तक हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल. Babylon Hospital, happiness, care, affection and dedication. माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय
2: Babylon Hospital, राजा पार्क, जयपुर. कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833.
0: 9:17 by the studio clock. A very very good morning. Namaskar. आप सुन रहे हैं Radio Pink City 100.3 FM. और टाइम है Tuesday special show motivational boost का, powered by Babylon Hospital, राजा पार्क. अच्छा, आज motivational boost में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उस आवाज से जिन्होंने सिंगिंग की दुनिया में देश विदेश में अपनी सशक्त पहचान बनाई है और अपनी जर्नी से ये प्रूव किया है कि टैलेंट के साथ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और नेवर गिव अप एटीट्यूड हो तो सपनों को रियलिटी बनाया जा सकता है. आवर स्पेशल गेस्ट टुडे इज अ सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर, परफॉर्मर, कंपोजर, प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर एंड ऑल्सो अ प्राउड चैनल वी सुपर सिंगर विनर एंड IGT8 टॉप फाइनलिस्ट. उनकी सोलफुल आवाज हमने कई हिंदी और राजस्थानी गानों में सुनी है. बॉलीवुड की तलाश, हैप्पी न्यू ईयर, इकबाल, रक्त चरित्र और सेकेंड हैंड हस्बैंड जैसी फिल्मों में भी उनकी आवाज का जादू बिखरा है. लेकिन आज हम सिर्फ उनके गाने और सक्सेस की बात नहीं करने वाले हैं. हम जानेंगे उनके सफर के पीछे की कहानी, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और सक्सेस को सस्टेन करना कितना चैलेंजिंग है, फेलियर्स ने उनको क्या सिखाया और यंग ड्रीमर्स के लिए वो क्या कहना चाहते हैं. सो लेट्स वेलकम द वॉइस, द जर्नी एंड द इंस्पिरेशन बिहाइंड द म्यूजिक, रविंद्र उपाध्याय जी. रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
3: थैंक यू सो मच. और मंगलवार की इस खुशनुमा सुबह में मैं सभी दर्शकों को नमस्कार बोलने के साथ साथ शुरुआत जो है वो करते हैं एक कुछ लाइनें डिवोशनल.
0: बिल्कुल.

0: वाह, सुबह की इतनी मीठी, प्यारी और भक्तिमय शुरुआत हो रविंद्र जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शो एक तरफ है, अब तो बस जैमिंग सेशन स्टार्ट कर दिया जाए।
1: संगीत अच्छा, से जुड़े होने में पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस विषय पर आज हम लोग हमारे दर्शकों से, श्रोताओं से बात कर रहे हैं, वो आपको आपके जीवन का एक पार्ट ही नजर आता है, पॉजिटिविटी। म्यूजिक इज इक्वल टू अ पॉजिटिविटी। व्हाई? बिकॉज हम जब भी कभी चाहें, वो सुबह, जैसे आज हमने सुबह से शुरुआत की है, तो वो आपकी चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, आप किसी भी वक्त जब भी आप डाउन फील करें, आप म्यूज़िक की तरफ देखिए, आप म्यूज़िक की तरफ जाइए। अच्छा संगीत, अगर आप खुद संगीतज्ञ हैं तो ज़रूर अपना कुछ रियाज कीजिए, और नहीं तो अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो बढ़िया, अच्छा कुछ म्यूजिक सुनिए, तो पॉजिटिविटी अपने आप आपके पीछे पड़ जाएगी।
0: बिल्कुल, पॉजिटिविटी तो पीछे पीछे ही चलती है, और कलाकार की जिंदगी में भी अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल होता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो कला के जिस क्षेत्र में भी हम हों, वो हमेशा हमको जो दुनिया की जो सिनेरियोज होते हैं उनसे डिटैच करने में बड़ा मतलब बहुत ही प्रभावी रोल निभाता है। और देखिए क्या है, आध्यात्म, या हम आध्यात्म के, खैर बहुत बड़ा एक बहुत ही वृहद विषय है जिसके बारे में मैं बोलने वाला बहुत छोटा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी एक जनरल शब्द आपने सामान्य जीवन में बड़ा सुना होगा, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान। देखिए सही बात तो यही है कि म्यूज़िक जो है वो अपने आप में मेडिटेशन ही है। आप जब भी कुछ गाने लगते हैं, मैं तो सिंगर की तरह बात करूं, जब कुछ गाने लगते हैं तो आपका सारा ध्यान जो है सब जगह से हटके एक जगह लगता है, वो आपके सुर पे, कि सुर लग जाए, सुर सही रहे, या हमें आगे क्या कॉम्पोजिशन गानी है, क्या लिरिक्स होनी है, तो वो ध्यान को केंद्रित करना ही मेडिटेशन का एक मतलब तरीका जो है वो यही तो है, अपने सारे विचारों को एक जगह लेकर आना,
0: केंद्रित करना,
1: एक जगह केंद्रित कर देना
0: जी।
1: तो बस ये संगीत का यही आनंद है।
0: कमाल की बात है, और संगीत का यही आनंद है और संगीतमय है ये पूरा सफ़र। मोटिवेशनल बूस्ट पे हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे रविंद्र जी। अच्छा देखिए, पर्सन से पर्सनालिटी बनने का जो सफ़र होता है वो कभी भी आसान नहीं होता किसी के लिए भी। तो हम आपके सफ़र को भी शुरू से जानना चाहेंगे। आज जिन रविंद्र उपाध्याय को हम देखते हैं, सुनते हैं, उनके कॉन्सर्ट्स हम अटेंड करते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई? आम से जो खास बनने का सफर था, कितना पथरीला और कितना सुरीला रहा?
1: देखिए दोनों चीजें हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा नाटकीय स्वरूप तो नहीं दे सकता, एक जनरल सी बात। शुरुआत सबकी देखिए संघर्षमय होती है, चाहे कोई भी आप कितने भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट को देख लें या कोई और पर्सनालिटी देख लें, शुरुआत तो देखिए सबकी एक बड़े ही हम्बल तरीके में होती है। तो अगर एज अ म्यूजिशियन मैं अपनी बात करूं तो मैं तो हमारे तो पूरे खानदान में कोई म्यूजिशियन नहीं है, अब आप सोच
0: अच्छा,
1: सकते हैं।
0: तो आप मतलब फर्स्ट जनरेशन सिंगर
1: यूं माने कि मैं मतलब मैं पहला हूँ, हालांकि मैंने अपने परिवार की जो परंपरा है उसको पहले निभाया। पहले मैं वकील बना, पहले मैंने अपनी वकालत कंप्लीट करी, उसके बाद मैं आर्टिस्ट बना। तो
0: नहीं, ये एक ट्रिविया है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम एक वकील साहब को बाद में एज अ सिंगर देख रहे हैं, मतलब कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास, कहाँ वकालत, कहाँ गायकी।
1: ये भी देखिए सही बात तो ये है कि कभी कभी चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन इस बात को मानना, कई बार हम सरेंडर करते हैं इस बात पे कि भाग्य जो है बड़ा प्रबल होता है। आपके भाग्य में क्या लिखा है, आने वाले कल में आपके जीवन के लिए क्या लिखा है, उसका कोई अंदाज़ा हम आज बैठ के नहीं लगा सकते। आज ये नहीं सोच सकते कि अगर मैंने मेरा LLB कंप्लीट किया है तो मैं बहुत बड़ा एडवोकेट बनूंगा, या मतलब या मैं जो है न्यायिक सर्विसेज ज्वाइन करूंगा और जज बनूंगा, जैसे मेरे पिताजी थे। तो उनके पदचिन्हों पे चलते हुए ही मैंने, और बड़ी श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि मैंने अनमना होकर मैंने LLB किया, मैंने प्रॉपरली मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, और साथ ही साथ RJS की तैयारियां भी चल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, जैसी अपनी बात चली थी कि भाई शुरुआत में हाँ मेरा शौक था, अभी भी है संगीत। स्कूलों जितने भी अलग अलग स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ राजस्थान भर में, लगभग सभी स्कूलों में अपने वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे वहाँ पार्टिसिपेट करना, हर 15 अगस्त 26 जनवरी पे बहुत ज़्यादा उछलते कूदते अच्छा। खुश होते हुए वो परफॉर्मेंसेस को, या कभी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते तो उनमें पार्टिसिपेट करना, वो सारी चीज़ें। सो म्यूज़िक हमेशा से था मेरे जीवन में। मैं जब क्लास 7th में था, पापा की पोस्टिंग डीग थी, उस टाइम तो भरतपुर से अलग नहीं हुआ था, डीग और भरतपुर एक ही जिला था। तो डीग में क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ सरकारी ये नहीं था, मगर अकोमोडेशन था नहीं, तो एक प्राइवेट अकोमोडेशन में हम लोग शिफ्ट हुए। और वहाँ पे जो हमारे मकान मालिक थे वो एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा थे, उनके पास एक बहुत पुराना, उनकी एज से भी ज़्यादा एज का एक हारमोनियम पड़ा हुआ था,
0: विंटेज
1: और वो विंटेज भी ऐसा था कि उसका पर्दा वगैरह सब फटे हुए थे बड़ा, तो उसको मतलब बहुत ही अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़ा हुआ था वो। तो मैंने देखते ही हारमोनियम देखते ही मेरे को बड़ा आकर्षण हुआ, तो मैंने उनसे बाबा से परमिशन ली, पूछा उनसे मैंने, बाबा मैं बजा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने पूछा कि आपको आता है बजाना? मैंने कहा मेरे को ऐसे अच्छी तरह नहीं आता, लेकिन मेरा ऐसे बजाने की इच्छा है। अरे ठीक है बेटा, आप देख लो, बजा लो। तो वो फटे हुए हारमोनियम को पापा ने थोड़ा ठीक भी किया, उस पर कुछ चिपका चिपकू के जैसे तैसे, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा सुविधा थी नहीं। उसी हारमोनियम से मैंने विदिन लाइक एक डेढ़ महीने दो महीने बाद मैं असल में ऐसे छेड़ता रहता था कीज को, कुछ भी, क्योंकि आता नहीं था मुझे बजाना। तो हुआ ये कि एक दिन मैं खाली ऑल ब्लैक्स को ऐसे टच, जितनी ब्लैक कीज होती हैं अपनी, खाली इनको ऐसे ऐसे देख रहा था

0: अब आप देख रहे हैं इसमें मैंने जितने भी कीज अभी तक प्ले करे हैं एक भी वाइट पे नहीं आया, सिर्फ ब्लैक ब्लैक ब्लैक. गाना बजना शुरू हो गया. मैं इतना खुश हुआ.
1: तो ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट
0: मतलब
1: सीखा नहीं, खुद ही प्ले करना शुरू कर दिया.
0: तो ये भगवान की दया रही. तो मैंने फटाफट से मम्मी को सुनाया, मम्मी भी बहुत खुश हुई, सब बहुत खुश हुए. बस फिर वहां से मैंने बाजे के पीछे पड़ गया मैं फिर तो. बस रोज एक दो दिन में कोई ना कोई नई धुन, नया कुछ गाना निकलता और बहुत मजा आता है. फिर मैं स्कूल में अपने सर से भी, उनसे भी पूछता, हमारे म्यूजिक सर थे, उनको भी उल्टा सीधा कुछ बजा के सुनाता, फिर वो कुछ करेक्ट करवाते. ऐसे करके ये जीवन शुरू हुआ.
1: शुरुआत हो गई. अच्छा, जब आप वकालत कर रहे थे तो जिरह कैसे करते थे? सुर में करते थे? इतनी प्यारी आवाज के साथ कैसे करते थे?
0: नहीं देखिए, यहाँ पे भी नो ड्रामा. आपको सच बात बताऊं कि बिल्कुल इनिशियल शुरुआती स्टेज में एक बार ऐसा हुआ था, बस एक ही बार. मेरे जो सीनियर थे जिनके पास मैं प्रैक्टिस मैंने शुरुआत की थी, ग्वालानी जी, तो वो NDPS के, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के केसेस जो थे वो वो उनके एक्सपर्ट थे. उनके पास बहुत सारे, मतलब ये मान लीजिए ऑलमोस्ट 85% केसेस उनके ये NDPS ही होते थे. तो हुआ है कि एक बार, अच्छा मेरा काम ज़्यादा कुछ होता नहीं था, शाम को डिक्टेशन लेना और बहुत सारी चीज़ें, उन मैं रात को हम लोग बैठते थे नेक्स्ट डे के केसेस की तैयारी के लिए, तो वो होती थी. और ज़्यादातर मैं, हम लोगों को कोई मेजर काम नहीं दिया था, जाओ ज़्यादा तारीख ले आओ.
1: अच्छा,
0: एक बार क्या हुआ कि मैं उन्हें भेज दिया, जाओ तारीख ले आओ. अब तारीख क्या हुआ, क्योंकि जज साहब तो बहस सुनने के लिए तैयार थे
1: जी,
0: तो उन्होंने रोक लिया मेरे को. रोको, बोले किसकी तरफ से आया? मैंने ग्वालानी जी. ठहरो, आज तो वो करनी है बेटा, बहस करनी है. अब मैंने कहा सर मैं तो प्रिपेयर होकर नहीं आया. नहीं कोई बात नहीं, एक घंटे बाद आ जा.
1: Okay.
0: पीछे पड़ गए वो. और मतलब बहुत जबरदस्त सिचुएशन हो गई. केस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें सीधी 20 साल की सजा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो जमानत नहीं होती, हाई कोर्ट पहुंचना पड़ता
1: है. कितनी तगड़ी.
0: हाँ जी, हाँ जी. और तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत हल्के में लेने वाला मामला है, क्योंकि अगर चीज़ बिगड़ी, एज एन एडवोकेट मैंने कुछ गड़बड़ करी, तो सीधा क्लाइंट को 20 साल की सजा हो सकती है. इनफैक्ट वो जेल में है, उस टाइम पे जमानत भी नहीं होती उसकी.
1: ओहो,
0: बहुत टफ टेढ़ा सा मामला था. हालांकि एक्ट वो बहुत प्रिसाइज सा एक्ट है, बट अगेन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. आई वॉज रियली नॉट श्योर. दो मुझे पता था कि रात को हम लोगों ने उसके लिए चीजें चेक करी थी, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें बोली जा सकती थी, तो मैं डर के मारे भाग गया.
1: अच्छा.
0: सीधा गया वकील साहब के पास. मैंने कहा सर वो तो जज साहब कह रहे नहीं, बहस करो, बहस सुनूंगा आज तो. तो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल नए नए जब लड़के होते हैं तो वो जिम्मेदारी उठाने की, वो कहते ना कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिनमें आपके बालों की सफेदी देखी जाती है.
1: एक्सपीरियंस.
0: हाँ, right. जी, कितने पके हुए हैं आप वो नजर आता है. तो मैंने तब तक ही वकालत करी जब तक कि सफेदी कोई काम ही नहीं था सफेदी का. तो मतलब मैं उतना पकावा नहीं था. बट अगेन मुझे लगता है कि चाहे मैं CA होता, चाहे मैं डॉक्टर होता, किसी भी प्रोफेशन में होता, एक्सपीरियंस तो काउंट किया ही जाता है.
1: राइट.
0: और अब इसमें देख लीजिए,
1: इसमें तो 3 दशक हो गए आपको गायकी में.
0: 3 दशक हो चुके हैं.
1: और ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी आप जुड़े थे. 97 वाज द ईयर, राइट?
0: जी, 97. इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि ऑल इंडिया रेडियो से तो मेरा जुड़ाव 97 में ऑफिशियल हुआ. उससे पहले अनऑफिशियली भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, मैंने 96 में मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में गाया था. और फिर उसी टाइम पे फिर ये बात हुई कि नहीं भाई तुम जरा अप्रूवल ले लो, थोड़ा पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे. हाँ. और ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा. तब मैंने ऑडिशन दिया था.
1: क्या बात है. तो यहाँ से खैर आपकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत हो गई. शुरुआती दिनों का कोई गाना जो आप आज भी गुनगुनाते हो?
0: ओहो, देखिए शुरुआती दिनों में मैं आपको बताऊं, बचपन से मैं, हमारे घर में ना एक वो रफ़ी साहब के गाने बजते थे, वो कैसेट थी हमारे पास, जिसमें रफ़ी साहब का एक लाइव शो जो उन्होंने इंग्लैंड में किया था उसकी वो रिकॉर्डिंग होती थी. तो पता नहीं ये वाला गाना श्रोताओं ने, मुझे लगता है सालों साल ही हो गए होंगे, उसकी 2 लाइन आपको सुना था. बहुत समय, वो पहला ही गाना रफ़ी साहब उसमें आते हैं और इंट्रोडक्शन होता है रफ़ी साहब का, और रफ़ी साहब ये वाला गाना गाते हैं.

0: साहब की वो मधुर आवाज गूंजती है हॉल में, और वो मतलब मेरे लिए ऐसा सपने जैसा था कि काश कभी ऐसा कुछ ये हो पाए कि मैं रफ़ी साहब से मिलूं। हालांकि मुझे ध्यान है 82-83 में रफ़ी साहब चले गए हमको छोड़ के,
1: जी।
0: और तो मैं रफ़ी साहब से रूबरू तो कभी हो ही नहीं पाया। उस टाइम मैं बस बहुत छोटा बच्चा था। लेकिन जब मैं मुंबई गया और फिर वहाँ पे मेरा संपर्क रफ़ी साहब के परिवार से हुआ,
1: अरे वाह,
0: और रफ़ी साहब के बेटे शाहिद भाई, उनसे, शाहिद रफ़ी साहब, उनसे मेरा बहुत अच्छा संपर्क हुआ। और इतना अच्छा हुआ कि उनके घर आना जाना हुआ, और रफ़ी साहब के उनका वो बाजा और उनका वो थर्मस जो हमेशा हर रिकॉर्डिंग पे और हर जगह उनके साथ रहता, जिसमें गर्म पानी जाता था, और फिर उनके वो कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स, और मतलब वो सारा अनुभव मैंने उनके घर, रफ़ी साहब के घर पे बैठ के लिया। वहाँ गाना गाया, उनके गाए हुए गीत गाए,
1: वाह।
0: और बहुत बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट जो रफ़ी साहब के अभी पोते हैं उनसे भी मेरे मेरा अच्छा संपर्क है, फुजैल से। तो कहने का मतलब यह है कि वो उस परिवार से जाके मुझे जुड़ने का मौका बाद में मिला, लेकिन उस टाइम रफ़ी साहब के गानों से हम लोग बहुत इंस्पायर होते थे।
1: अमेजिंग। तो जिस तरह की शानदार खूबसूरत आवाज़ राजस्थान से निकलकर बड़ी दूर से आए हैं, मुंबई तक पहुंची, प्यार का तोहफा लेकर के पहुंची, और दिल से म्यूजिक इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने अपनाया इस शानदार सिंगर को जिनसे आज हम बात कर रहे हैं। वी हैव विद अस इन द स्टूडियो सेलिब्रेटेड सिंगर श्री रविंद्र उपाध्याय जी। आप सिंगर होने के साथ साथ परफॉर्मर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी रविंद्र जी, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे।
2: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास, नन्ही कदमों से माँ की गोद तक, हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबी लॉन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय बेबी लॉन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।
1: इट्स 9:35 बाय द स्टूडियो क्लॉक। आप सुन रहे हैं हमारा ट्यूसडे स्पेशल मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबी लॉन हॉस्पिटल, एंड वी आर ग्लैड, हैप्पी, ऑनर्ड टू हैव विद अस इन आवर स्टूडियोज श्री रविंद्र उपाध्याय जी। आप सिंगर हैं, जाने माने सिंगर, परफॉर्मर, कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर। तो रविंद्र जी, आप सामने बैठे हैं तो मुझे तो सवाल ही नहीं सूझ रहे, मैं सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गाने सुनती रहूँ।
0: जरूर। तो
1: आपका
0: मैं आज
1: बहुत दिल के करीब वाला गाना।
0: जी हाँ, बिल्कुल दिल के इतना करीब कि जब आपका पहला प्लेबैक होता है जो,
1: जी
0: वो मतलब वो लाइफ का एक इतना बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप बिग स्क्रीन पे आपकी आवाज, मतलब फिल्म चल रही है और आपकी आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही है, पूरा हॉल आपकी आवाज से, तो वो एक अनुभव बहुत ही शानदार। और वो अगर हिमेश रेशमिया जी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के संगीत में आपने गाया हो, और फिल्म हो इकबाल जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, श्रेयस तलपड़े अपना जो है बहुत ही शानदार
1: करियर का बेस्ट दिया,
0: बिल्कुल करियर बेस्ट वहाँ प्ले कर रहे हैं, तो वो फिल्म भी ऐसी शानदार थी। और मुक्ता आर्ट्स की फिल्म, नागेश कुकनूर का डायरेक्शन और गाना ये वाला
1: जी।

0: ब्यूटीफुल, आशा है ज़िंदगी, और यही तो हम मोटिवेशनल बूस्ट में सबको बताते हैं कि उम्मीद और आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपका वो गाना रविंद्र जी, जिसके तो हम लोग ऐसा लगता है कि उस गाने के चरण स्पर्श कर लिए जाएं, इतना प्यारा गाना है, क्या शानदार कॉम्पोजिशन
1: जी, बिल्कुल। और
0: जो रेंज आपकी उसमें सुनाई देती है, मतलब लिटरली हैट्स ऑफ।
1: थैंक यू,
0: हैट्स ऑफ। बस मैं इसके आगे उस गाने की ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे।
1: जी बिल्कुल, असल में जिस गाने के बारे में श्रोताओं हम लोग बात कर रहे हैं, ये गाना है फिल्म तलाश का। और उस गाने की खास बात ये है कि क्योंकि वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के इर्द गिर्द चलता हुआ, और फिर उसके बाद जो वेस्टर्न म्यूज़िक है उसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, वो गाना आपको हमेशा फ्रेश ही फील होता है उसमें।
0: Exactly.
1: उसमें मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये तो बहुत पुराना गाना है। आप कभी भी उस गाने को सुने, आप फटाफट से उससे कनेक्ट हो जाएंगे।
0: मैं अक्सर अपने शो में उस गाने को प्ले करती हूँ। 14 इयर्स हो गए उस गाने को,
1: yes, है ना? It's been 14, in fact, और ज्यादा, 2012, हाँ, तो इट्स लाइक 14-15
0: ईयर्स ऑलमोस्ट,
1: करेक्ट। और सोना महापात्रा की आवाज है उसमें मेरे साथ में, राम संपत जी का म्यूजिक है और जावेद साहब के लिरिक्स हैं।
0: कमाल का कॉम्बिनेशन
1: जी, बहुत बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना बना था वो तो। क्यों नहीं फिर वो वाला गाना सुना जाए?
0: क्यों नहीं, नहीं, इसकी तो गुजारिश बार बार होती है आपसे, बार बार रिक्वेस्ट करूंगी मैं। वैसे मेरा बस चलता तो मैं लूप में सुनती इस गाने को, पर आज एक बार जरूर सुन लेते हैं।

0: थैंक यू.
1: क्या बात है, लिटरली गूज़बम्प्स गूज़बम्प्स. ये गाना जितनी बार भी सुनो, आप सच कह रहे हैं, इतना फ्रेश लगता है, कभी नहीं पुराना होगा ये वाला गाना.
0: हाँ, इसका फील वही है, हमेशा आपके नज़दीक रहेगा ये.
1: हाँ बिल्कुल. तो जब ये गाना आपके किटी बैग का हिस्सा बना, उस समय क्या इमोशंस थे?
0: अब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी फटाफट से शॉर्ट में सुना देता हूँ. देखिए क्या है, ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, वो बड़ी ही अनप्रिडिक्टेबल सी है, आपको बड़े ही अजीब तरह से टेस्ट करती है.
1: राइट.
0: और उन सब टेस्ट्स में एक बहुत ही ब्रूटल एक ऐसा टेस्ट भी शामिल है जो कि नॉर्मली किसी भी आर्टिस्ट को, स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बड़ा किसी को भी बड़ा इमोशनली तोड़ सकता है, डिसहार्टन कर देता है. एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक बिट्रेड, और मतलब आई मस्ट से कि अरे यार ये क्या हुआ मेरे साथ. बट अगेन दिस इज नाउ इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ यू नो डे टू डे लाइफ ऑफ अ एस्पायरिंग प्लेबैक सिंगर. स्पेशली हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मुंबई में हजारों लाखों सुपर डुपर टैलेंटेड लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड ईच एंड एवरी वन इज स्ट्रगलिंग. इनफैक्ट दे ऑल आर पुशिंग ईच अदर टू यू नो कम फॉरवर्ड. और सब अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं, सब अच्छे.
1: उसमें लेग पुलिंग भी है
0: ऑब्वियसली. वो जब ज्यादा भीड़ होती है तो यही तो होता है भाई, रोटी एक है, खाने वाले 1,000 हैं.
1: बिल्कुल, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन.
0: तो फिर मार्केट

0: पहुंचेगी।
1: जी।
0: और वो मार्कट में असल में होता ही है कि फर्दर काम के बोझ से बचने के लिए और कुछ ज्यादा डिलेज ना हो जाए, उन सब से बचने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि दे ट्राई मल्टीपल वॉइसेस फॉर अ सिंगल सॉन्ग, अ कंपोजिशन। मतलब ये ट्रेंड है, एग्जिस्ट करता है इस तरह से, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का, लेकिन ये करता है और ये प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा है। पहले कुछ कम थी लेकिन अभी तो मतलब ये मान लीजिए हर एक गाना के ऊपर 8-8, 10-10 वॉइसेस हैं ऑप्शन के रूप में। अलग अलग टोन्स को ट्राई करते हैं वो लोग, अलग अलग स्टाइल ऑफ सिंगिंग सिंगर्स को ट्राई करते हैं जिनका कुछ फ्रेश वॉइसेस होती हैं, कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग भी होते हैं, कुछ हिट गाने दिए हुए बहुत बड़े बड़े नाम भी होते हैं। ये चीज़ बाद में मैंने देखी जब मैंने वो चीज़ें देखी कि नहीं मैं अकेला ही नहीं हूँ इस लिस्ट में, तो एक से एक बड़े बड़े नाम भी हैं। तो अगर वो लोग भी इस लेवल तक का संघर्ष कर रहे हैं तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ। तब जाके मेरे मतलब मैंने ये इस चीज को अपने मन में थोड़ा सा शांत किया, अदरवाइज ये बहुत साल पहले हो चुका था मेरे साथ। मतलब इट वाज अ वेरी बिग फिल्म, मैं सोच रहा था काम हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। मैं उन सब प्रोजेक्ट्स का नाम अभी यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हम सब कभी वैसे होगी बातचीत तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने गाने और कितने बड़े बड़े गाने, कितने बड़े बड़े प्रोडक्शंस के वो बिग हिट्स वो मैंने भी गाए, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन जिया लागे ना में ये हुआ, जिया लागे ना में भी आपके को मोटा मोटा बता देता हूँ कि 14-15 लीडिंग मेल सिंगर्स की आवाज इसमें ट्राई की गई।
1: ओह माय गॉड, यस, ओह माय गॉड।
0: मतलब बड़े बड़े नाम है, मैं कान पकड़ लूँ ऐसे बड़े बड़े नाम है, क्लासिकल के भी और जो नॉर्मल अपने बॉलीवुड सिंगर्स भी हैं, बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया इस गाने को।
1: I was fortunate enough
0: कि ये आवाज मुझे मतलब मेरी आवाज वहां पे पसंद आई लगी। और एक जोरदार बात बताता हूँ कि ये गाना रिलीज होने से लगभग 1.5 साल पहले गा दिया था मैंने, और मैं कम्प्लीटली भूल चुका था कि कोई इस टाइप का मैंने गाना गाया भी था। मेरे एक फ्रेंड का फोन आया अक्टूबर में जब ये रिलीज हुई फिल्म, तो भाई तेरा गाना आया। मैंने कौन सा गाना भाई? तो उसने मुझे अपनी कार में चल रहा था मतलब तो उसने फोन से ऐसे सुनाया मुझे, तो जब थोड़ा सा फ्रेज आया ये जिया लागे ना, मैंने कहा हाँ यार सुना सुना सा लग रहा है, किसका है? फिर मैं उसने सारी बात बताई, तब जाके क्लियर हुआ कि अरे मेरा गाना आ गया और मुझे पता ही नहीं है।
1: और देखिए टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर हिट।
0: यस,
1: ये सॉन्ग स्टिल फ्रेश, वही क्या खास उसकी मेलोडीज है, सीरियसली अमेजिंग। अच्छा रविंद्र जी, सोलफुल मेलोडीज की बात हो, एनर्जेटिक ट्रैक्स हो, अलग अलग स्टाइल्स आपने एक्सप्लोर किए हैं, हिंदी में तो गा ही रहे हैं आप, भजन भी है, गजल भी है, गजल जरूर सुनूंगी मैं, बॉलीवुड एंड राजस्थानी ऑल।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि राजस्थानी हैं तो राजस्थानी गाने तो आप लिख भी रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, गा भी रहे हैं।
0: जी हाँ, और देखिए मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत में बात कर रहे थे कि म्यूजिक मेक्स यू पॉजिटिव और कीप्स यू पॉजिटिव वाली जो बात, हम जो मेरे युवा साथियों से बात कर रहा हूँ इस वक्त में, आपको जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिशियन ही बने तभी आप पॉजिटिविटी को अपना, आप कोशिश करें अपने आसपास अपने पर्सनल लाइफ में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट पैदा करें जो आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, किसी भी तरह के डिप्रेशन से फटाफट से बाहर लाने में, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप 3-4 अलग अलग चीजें ट्राई करें, कुछ सिंपल सी चीज, कोई सिंपल सा काम ऐसा, चाहे वो जैसा मैंने कहा कि हम म्यूजिशियंस हैं तो आप चाहे म्यूजिक सीख सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप कितनी सारी, आप और कुछ नहीं तो जिम जा सकते हैं, सबसे जोरदार चीज है। मतलब जब मैं हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्रिकेट खेलिए, मैं मतलब मैं दिन रात, आज भी शाम को मैच है तो वो जो 3-4 घंटे हम मैदान पे होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, मैं सारी मतलब सारी टेंशन खत्म हो जाती है, मेरा सारा फोकस उस वक्त गेम पे होता है। तो आप गेम खेलिए, स्पोर्ट्स में जाइए, आप बैडमिंटन खेलिए, आप टेनिस खेलिए, आप स्विमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान कॉलेज की को रिप्रेजेंट करता था, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी टीम जब बनती थी तो राजस्थान कॉलेज की तरफ से मैं क्रॉस कंट्री में पार्टिसिपेट करता था, रोज 10 किलोमीटर भागना करना। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, लाइफ इज टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट।
1: एक्चुअली
0: आप आप इस वक्त अगर आप 17-18 साल के हैं तो आपको लग रहा होगा बहुत लंबी जिंदगी है, पता नहीं अभी तो जाने क्या क्या करना बाकी है। आज जब मैं मेरी एज में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार अरे और कितनी सारी चीज़ें रह गई यार करना, यार मुझे ये भी करना था वो भी करना था, देयर इज सो मच टू डू इन दिस यू नो।
1: हाँ
0: तो आप खूब सीखिए, खूब जोर लगाइए, ये खाली एक फोन, एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म या कुछ लाइक्स वाइक्स छोड़ो यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ के भाग जाओ, इसको बस एक छोटा सा पार्ट ही रखो। अरे इतना है, कमरे से बाहर तो निकलो, इस खुले आसमान में हाफ दोनों हाथ फैला के भर से अच्छी सी सांस भरो, कितना मजा आ जाएगा आपको। मतलब वो रात को 1:30 बजे तक माथापोड़ी करने के बजाय बेटर है कि तुम 10:30 बजे सो जाओ, सुबह 6:30 बजे अकेले उठ के फिर जाओ, फिर तुमको जो मजा आएगा, मतलब सच बता रहा हूँ। तो कोशिश करो, ढूंढो अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव ऐसी बात होगी जो आपको फटाफट से हर चीज से रिकवर कर देगी।
1: Amazing.
0: आपको अपने मम्मी पापा के लगातार, अपने दोस्तों के लगातार बातचीत करनी है, उनसे संपर्क में रहना है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मैं मेरे मम्मी पापा को नहीं बता सकता। भाई नहीं बता सकता तो नहीं बता सकता, किसको बताओगे यार, अपने दोस्त को बता दो, अपने किसी कजन को बताओ, किसी को ऐसे, और कुछ नहीं तो अपने डॉग को बता दो यार।
1: कोई ना कोई आपका कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सके।
0: बिल्कुल, ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए। अपने कोई चाचा जी हो, मामा जी हो, उनको दोस्त बनाइए, उनके अनुभव सीखिए, उनसे आप कोशिश कीजिए कि आप क्या क्या चीजें उनको बता सकते हैं। आप डरो मत, अरे भाई हम तुम्हारे लिए हैं यार, क्योंकि तुम हमारे हो, हम इसी वजह से तो हम तो आप लोगों की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो शायद तू कर लेगा।
1: तो जितनी सहजता से आपने युवाओं को संदेश दे दिया, उन्हें बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, और ज़िंदगी वैसे भी बहुत प्यारी है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, इस बात पे मैं एक प्यारी सी गजल आपसे सुनने की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं बड़ी देर से इंतजार कर रही हूँ कि एक गजल जो है रविंद्र जी की आवाज में आज हम सुन लें एक्सक्लूसिवली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
0: बिल्कुल अनामिका जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जयपुर में, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मेरे करियर के इनिशियल स्टेज से मैं अपने जयपुर शहर को मैंने जिया है, यहाँ की हवा में मैंने सांस ली है, और मैं अपने आप बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। जब आज से 25 साल पहले 2000 की बात बता रहा हूँ मैं, और सारे गामा का वो आपको तो पता ही है, बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था उस टाइम, कम ग्लैमर और भयंकर म्यूजिक,
1: असली टैलेंट,
0: हाँ भयानक, मतलब म्यूजिक ही म्यूजिक।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ जब हम लोग वहाँ शूटिंग के लिए पहुँचे, इंदौर शूट था हमारा वो, तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पता लगा कि जब लोगों ने पूछा जी हाँ जी कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला जयपुर से, जयपुर सुनते ही उन्होंने कान के हाथ लगा दिए, कान पकड़े, अरे जयपुर से, अरे क्या बात है, बड़ा अच्छा माहौल है जी वहाँ तो। तो हमारे जयपुर के सिंगर्स ने अपने आप को प्रूव किया है एक बार नहीं हजार बार,
1: राइट,
0: अलग अलग प्लेटफॉर्म पे,
1: सिंगर्स हो, पोएट, बिल्कुल, और
0: बिल्कुल, और जयपुर घराना जो है उसने अपना एक अलग स्थान बनाया है। हम लोग हम्बल हैं, हम लोग शांत हैं, दिखावा कम करते हैं, प्यार ज्यादा करते हैं, अपने काम से भी, अपने लोगों से भी, अपनी जमीन से भी,
1: बिल्कुल
0: बहुत ज्यादा। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे जयपुर में रह के संगीत के आसपास और यहाँ के टॉप म्यूजिशियंस के आसपास बैठना, उनके साथ उनसे बहुत सारी चीज़ें, उनकी हर चीज़ सीखना समझना मिला मुझे। अब यहाँ पे मैं आपको अब जैसे आपने फरमाइश की हो हजारों कॉम्पोजिशंस घूमने लग गए।
1: कोई भी जगजीत सिंह साहब की जो आपको पसंद हो।

0: ब्यूटीफुल।
1: अब ये नज्म यूं तो बहुत लंबी है
0: एक्चुअली,
1: तो थोड़ा सा कट-शॉर्ट कर रहा हूं। हां
0: मैं तो राजस्थानी गाना भी सुनने की गुजारिश कर रही हूं।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल लगे हाथ।
1: तो इसी बात पे जरा सा मामला चेंज करते हैं और आते हैं अपनी माटी की तरफ।
0: बिल्कुल अपने धोरों की।

0: क्या बात है। शो का ड्यूरेशन जो है मुझे ऐसा लग रहा है आज थोड़ा कम पड़ रहा है।
1: हाँ मैं तो जब स्टूडियो पहुंचा था तो आते ही शायद आपको ध्यान होगा मैंने पहला सवाल यही किया था क्या हम थोड़ा और लंबा खींच सकते हैं इसे। लेकिन सच बात यह है कि जयपुर के हमारे श्रोता
0: जी
1: स्पेशली आकाशवाणी के हमारे जितने भी श्रोता हैं
0: जी,
1: और 100.3 जिसे कि मैं बिल्कुल अपना एक ये मान लीजिए कि एक दूसरा घर है मेरा, आपको एक जोरदार बात बताते बताते जाऊंगा।
0: मैं और बात कट शॉर्ट करके गाना जरूर सुनूंगी एक आखिरी
1: कि हमारा जो स्टार्टिंग ट्यून है FM रेडियो पिंक सिटी पिंक सिटी, इसमें भी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। इसमें मैं हूं, संजय राजादा जी हैं और सुप्रिया सक्सेना जी हैं और भी इसमें कुछ आवाजें हैं। तो एक ये कोरस सॉन्ग है, वैसे तो दीपक माथुर जी का कंपोज किया हुआ गाना है। तो ये जब FM शुरू हुआ जयपुर में तो सबसे पहले ये काम हुआ कि उसमें मुझे गाने का मौका मिला।
0: व्हाट अ ब्लेसिंग।
1: यस,

0: आप 100.3 रेडियो पिंक सिटी सुनिए और स्टे पॉजिटिव, और साथ ही साथ
1: अच्छे अच्छे गाने सुनते,
0: बढ़िया बढ़िया गाने
1: रविंद्र जी सामने हो तो एक गाना और सुन लीजिए इसी बात पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, तो देखिए गानों की

दो लाइनें आपके लिए पेश कर रहा हूं, हालांकि ये राजस्थानी नहीं है, हैं पंजाबी में, लेकिन आएगा मजा क्योंकि ये है हमारे सभी फ्रेंड्स के नाम, और मैं सभी फ्रेंड्स को चाहूंगा कि अपने जीवन में दोस्तों की जो है महत्व उसको जरूर समझें।

Lord.

0: क्या बात है, क्या बात है रविंद्र जी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गौरव सर से परमिशन लेकर के शो को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और मैं जब भी आकाशवाणी आता हूँ तो सच बात ये है कि मेरा मन ही नहीं करता अपने घर से वापस जाने का, और लेकिन समय की सीमाएं हैं, उसी सीमा में रहते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला समय आपका बहुत पॉजिटिव हो, बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ हो। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए 100.3 रेडियो पिंक सिटी।
0: थैंक यू सो मच रविंद्र उपाध्याय जी, वक्त निकाल के आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार,
1: नमस्कार।
2: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास, नन्हे कदमों से माँ की गोद तक, हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबी लॉन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।
0: आप सुन रहे थे मोटिवेशनल बूस्ट, हमारा ट्यूसडे स्पेशल पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। और आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे सेलिब्रेटेड सिंगर, परफॉर्मर, कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर श्री रविंद्र उपाध्याय जी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर गौरव यादव। नेक्स्ट आवर हम लेकर आएंगे आपके लिए गुनगुनाते लम्हे। स्टे ट्यून्ड विद मी अनामिका ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, 100.3 FM।
2: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
5: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
4: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
5: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
6: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
7: व्हाट इफ समथिंग एज सिंपल एज ब्रीदिंग could help you live better? We breathe every moment, but have we ever truly learned the art of breathing? Pratibhim Charitable Trust brings a special 3-day breathing camp to Jaipur from 18th to 20th September at Hotel Jaipur Ashok. For registration, call 94141-16837. Pratibhim Charitable

0: सुबह के 10 बज के 10 मिनट हाँ जी स्माइलिंग टाइम वेलकम बैक है जी। गुड मॉर्निंग नमस्कार। रेडियो पिंक सिटी आप सुन रहे हैं ऑन 100.3 एफएम। मेरा नाम है अनामिका। सेकंड आवर शुरू हो चुका है। गुनगुनाते लम्हे इस आर हम आपके लिए लेकर आते हैं जहाँ पर आपकी चॉइस के गाने प्ले किए जाते हैं। देखो आज तो म्यूजिकल मॉर्निंग अपनी जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। रविंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ में थे और 9:15 से 10 क्या खूबसूरत गाने हमने उनसे सुने और कितनी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने हमें बताई है ना। तो बस इसी चीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इस आर अच्छे अच्छे गाने आपके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ। तो आपको पता ही है ड्रिल कि कैसे आप रिक्वेस्ट अपनी पहुंचा सकते हैं हम तक। आप कॉल कर सकते हैं 2200-700-2200-800 पर या फिर जाइए फेसबुक जिंदाबाद पर। फेसबुक पे आपको जाना है और जो हमारा रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ के लेटेस्ट पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपना गाना लिख देना है। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। ऐसा करते हैं शुरुआत कर लेते हैं रेखा वर्मा जी आपके गाने के साथ। गुलजार साहब के बोल हैं, आशा जी की आवाज़ है, पंचम दा का म्यूज़िक है। जब ये इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है तो गाना बनता है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आपको पता है ये गाना जो है ना ये बस एक कविता की तरह से था और गुलजार साहब लिख करके ले गए आर डी बर्मन के पास में और उन्होंने कहा कि इस गाने को कंपोज करना है। पंचम दा ने कहा यार गुलजार, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या लिख करके ले आते हो, ऐसा लग रहा है कि अखबार का एक टुकड़ा लायो और उस पर कोई न्यूज़ लिखी हुई है और उस न्यूज़ को मुझे कंपोज करना है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आप देखेंगे इस गाने में यूजुअली जो तुकबंदियाँ होती हैं वो नहीं है, यूजुअल तुकबंदी इस गाने में नहीं है। तो पंचम दा ने उठा करके उस कागज़ को फेंक दिया। उस समय उन्होंने कहा ये क्या लेकर के आए हो, ऐसा लग रहा है न्यूज़ है, किसी समाचार को क्या मैं कंपोज करने बैठा हूँ यहाँ पर। आशा जी वहीं बैठी थी, उन्होंने उस कागज़ को उठा लिया और उन्होंने यूं ही गुनगुनाना शुरू कर दिया और एक्चुअली सुर में गुनगुनाया। पंचम दा ने जब ध्यान से सुना तो उन्होंने कहा अरे अरे वापस वापस गुनगुनाना, कैसे गुनगुनाया। तो आशा जी ने गुनगुना दिया, बस यहीं से इस गाने की धुन बन गई। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस गाने को ओरिजिनली आशा जी ने ही कंपोज किया लेकिन बाद में पंचम दा ने पूरी तरह से एक शानदार कंपोजिशन तैयार की और ये बेहतरीन गाना जो है वो बन के निकला मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। रेखा वर्मा जी आपकी रिक्वेस्ट पे ये गाना आपके लिए राइट हियर राइट नाउ ऑन रेडियो पिंक सिटी।
1: किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए, पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। टूट गए, नाराज हो गए, हाथ से अंगूठी उतारी, वापस कर दी, बाहों के कंगन उतारे और सात फेरों समेत लौटा दिए। लेकिन वो बाकी जेवर जो दिल में रख लिए उनका क्या होगा।

0: फिल्म का नाम इजाज़त, सिंगर आशा जी, कॉम्पोजिशन पंचम दा और लिरिक्स गुलजार साहब, मास्टरपीस मेरा कुछ सामान। कमल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार
0: सर, कौन सा जी जी गाना बताइए प्लीज। बिल्कुल गुनगुनाते लम्हे हैं, गाना बताएं अपना।
1: हाँ बता रहा हूँ, तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या।
0: बहुत खूबसूरत लता जी की आवाज है। फिल्म का नाम है हिंदुस्तान की कसम, है ना जी। थैंक यू कमल जी, आपका गाना प्ले करते हैं। है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या, बहुत ही प्यारी कॉम्पोजिशन है, बहुत ही शानदार ये गाना है, ये प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मधु टहलियानी जी, आपकी रिक्वेस्ट पे फिल्म साथ साथ का, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आहा क्या बात है, आज तो ऐसा लग रहा है हमारे लिसनर्स की चॉइस में चार चांद लग गए हैं। आपकी चॉइस में चार चांद लगेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट में भी चार चांद लगेंगे। सुनते रहिए गुनगुनाते लम्हे ऑन रेडियो पिंक सिटी।

0: ये गाना जब भी प्ले होता है ना, दिल खिल खिल सा जाता है ना, कितना हैप्पी सा भी गाना है, प्यारा सा गाना है, बीच में थोड़ी सी सैड और इमोशनल बातें भी हैं, बट ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो जगजीत सिंह साहब की आवाज़ किसी भी गाने की शोभा 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है ना, मानते हैं ना आप। 10:30 बजने वाले हैं, आप सुन रहे हैं गुनगुनाते लम्हे, हमारा ट्यूसडे स्पेशल। सुनीता झालानी जी हमारे साथ में हैं। सुनीता जी कैसी हैं आप? नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग मैम,
0: कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं, वो तो आप हैं ही। आज कैसी हैं?
1: आज भी बहुत अच्छी हूँ, आपसे बात हो रही है तो और अच्छी हो गई हूँ।
0: क्या बात है, चलिए आपसे बात करके हमें भी अच्छा लग रहा है। सुनीता जी का गाना बताया जाए, गुनगुनाया जाए।
1: मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लग प्यारा जैसा। तू कर मेरे मन को किया तूने क्या।
0: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सुनीता जी आपकी चॉइस बिल्कुल एवरग्रीन गाने की है और सभी लोगों को ये गाना पसंद है, एकदम फ्रेश लगता है आज भी, कितनी बार भी सुन लो, है ना? थैंक यू सो मच सुनीता जी, नाइस टॉकिंग टू यू। अभी आपका गाना प्ले करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किशोरदा की आवाज़ है, आहा हा हा, राजेश रोशन जी का म्यूजिक है, अमिताभ बच्चन और साथ में नीतू सिंह। ये गाना देखने में भी उतना ही प्यारा लगता है जितना सुनने में है। फिल्म का नाम है याराना, ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ और उसके बाद डियर लिसनर्स आप ही की चॉइस के गाने यहाँ प्ले होते रहेंगे। अभी आधे घंटे का टाइम और बाकी है, सुनते रहिए गुनगुनाते लम्हे विद मी अनामिका ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान सौ बात की एक बात है सही सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं पैसे मिलने के लिए नहीं
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से
3: What if something as simple as breathing could help you live better? We breathe every moment, but have we ever truly learned the art of breathing? Pratibhim Charitable Trust brings a special 3-day breathing camp to Jaipur from 18th to 20th September at Hotel Jaipur Ashok. For registration, call 94141-16837. Pratibhim Charitable Trust. Breathe better. Live better.
4: शानदार गाने

0: फाजिल जमीली साहब का शेर मुझे याद आ गया कि मुझे उदास कर गए हो खुश रहो, मेरे मिजाज पर गए हो खुश रहो। मुझे उदास कर गए हो खुश रहो, मेरे मिजाज पर गए हो खुश रहो। मेरे लिए ना रुक सके तो क्या हुआ, जहाँ कहीं भी ठहर गए हो खुश रहो। खुशी हुई है आज तुमको देखकर, खुशी हुई है आज तुमको देखकर, बहुत निखर संवर गए हो खुश रहो। तो दिल से दुआएं करते रहिए हर किसी के लिए कि खुश रहें। फिल्म सौतन की बेटी लता जी की आवाज़, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, प्रीति नितिन अग्रवाल जी की रिक्वेस्ट मालवीय नगर से। और महेश जांगीर जी, आई रियली होप आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार महेश जी।
1: नमस्ते मैडम, नमस्ते।
0: कैसे हैं आप?

0: बिल्कुल फिट एंड फाइन।
1: देखिए किसी ने कहा है कि बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, अगली लाइन आप कहेंगे उसे गौर से देखना कहीं
0: खुदा
1: ना हो।
0: बिल्कुल मैम
1: जी। महेश जी कौन सा गाना प्ले किया जाए आपके लिए?
0: मैम बॉबी फिल्म का है। मैम
1: बॉबी फिल्म का है तो आपको गुनगुनाना है बस।
0: हाँ बिल्कुल मैम
1: हो जाए।

0: बुझती रहे प्यास अखियों को रहने।
1: बहुत प्यारा गाना है, और पता है गाने में उतना ही डिफिकल्ट भी है ये गाना, लेकिन
0: बिल्कुल
1: लता जी तो परफेक्ट थी, और बस
0: बिल्कुल
1: साक्षात सरस्वती। तो चलिए उन्हीं की आवाज में प्ले करती हूँ।
0: थैंक
1: थैंक यू
0: यू
1: सो मच महेश जी, बहुत प्यारा गाना आपने रिक्वेस्ट किया, इसके लिए
0: थैंक यू
1: शुक्रिया, आभार।
0: थैंक यू।
1: बॉबी से अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास, और उसके बाद एक ऐसा गाना जो आज मैं पहली बार सुनूंगी, ऑल कर्टसी अशोक कनौजिया साहब, ये दिल लेकर नजराना, फिल्म का नाम है एक बार मुस्कुरा दो, मुकेश जी के साथ लता जी की आवाज़, ये डुएट प्यारा सा गाना भी हम सुनेंगे जरा सी देर में। सुनते रहिए गुनगुनाते लम्हे, और गुनगुनाते रहिए विद रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: 100.3 FM सुनते रहो,
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: What if something as simple as breathing could help you live better? We breathe every moment, but have we ever truly learned the art of breathing? Pratibhim Charitable Trust brings a special 3-day breathing camp to Jaipur from 18th to 20th September at Hotel Jaipur Ashok. For registration, call 94141-16837. Pratibhim Charitable Trust. Breathe better. Live better.
4: Hey, do you want to hear this?
5: जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM 100.3 FM।

आशा जी के साथ मुकेश जी की आवाज़ और एक बार मुस्कुरा दो का ये चुटीला सा चंचल सा गाना हमने आपके लिए प्ले किया। गुनगुनाते लम्हे आप सुन रहे हैं ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। आखिरी गाना प्ले करने का टाइम है इस आवर का और ये रिक्वेस्ट है दिनेश कुमार जी की। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। क्या खूबसूरत गाना है। आप सब गैस कर गए हैं कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। जैसे इसका म्यूजिक भी शुरू होगा ना आप समझ जाएंगे। किशोर दा की प्यारी सी आवाज, लाजवाब आवाज, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आप हमारे साथ ही रहिएगा नेक्स्ट आवर ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी में। एक बड़ी ही प्यारे शहर की हम सैर करेंगे और गाने भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अनामिका। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी,
1: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

ऐसे लंबे लंबे लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाओ ना, तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब मैं ज़रूर सुनती हूँ उसको लूप पर। और अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो इस तरह के गाने और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। राहत साहब की राहत देती आवाज़, नमस्ते लंदन, मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ है। 11:07 हो गए हैं। नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM और अनामिका के साथ इस आर ट्यूसडे क्या होता है ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी, जहां हम आपको देश दुनिया की खूबसूरत जगहों की सैर कराते हैं और आपको बताते हैं कि ये वो प्लेसेस हैं, हिडन जेम्स हैं हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, जहां आप जा सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक खूबसूरत ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। आज भी एक बड़ी ही प्यारी सी जगह का जो है हम भ्रमण करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि अक्सर किसी जगह पर पहुंचने के लिए अगर मुश्किल सफ़र तय करना पड़े और मंजिल शानदार मिले तो सफ़र कैसा भी हो मायने नहीं रखता, है ना। आपको आज एक ऐसी ही मंजिल के सफ़र पर हम लेकर के चलेंगे जहां चारों तरफ पहाड़ हैं, हरियाली है, रिच कल्चर है। ये जगह ही नहीं, यहाँ के लोग भी आपका मन मोह लेंगे। तो बहुत ही सीरीन शांत से पहाड़ों के बीच बसा अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है बोमडिला। लिटरली किसी जन्नत से कम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत कस्बों में से एक बोमडिला की सैर आपको ज़रूर करनी चाहिए। सनराइज़ का स्टेट कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का ये खूबसूरत कस्बा है बोमडिला, और लोकल लैंग्वेज में ला का अर्थ होता है दर्रा, पास। तो 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बोमडिला भारत को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है। और बोमडिला जो है अलग अलग जनजातियों का घर है। यहाँ मोम्पा, मिजी, आका, बेगुन और शेरडू कपिन जनजाति के लोग आपको दिखाई देंगे। बोमडिला कुदरती नज़ारों का भंडार है जो आपका मन मोह लेंगे। तो आज चलिए आपको लेकर के चलते हैं सूर्योदय के प्रदेश के इस खूबसूरत कस्बे बोमडिला के सफ़र पर, और साथ में गाने भी बहुत अच्छे, प्यारे प्यारे, दिल को सुकून पहुंचाते हैं। सुनते रहिए ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM। कुछ तो ख़ास है, कुछ तो बात है।

0: Hey, do you want to hear this?
1: जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM 100.3 FM

सोना मोहापात्रा एंड रवींद्र उपाध्याय ऑन द वोकल्स. फिल्म का नाम तलाश, राम संपत का म्यूजिक, जिया लागे ना तुम बिन मोरा. कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको बार बार बार बार सुनने का दिल होता है, ये वैसा गाना है. और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बार बार जाने का दिल होता है, अगर आप एक बार गए तो लौटने का दिल ही ना करें. ऐसी ही जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है बॉमडिला. अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन क्या शानदार यहाँ के नज़ारे हैं. पहाड़ों के बीच है और बौद्ध अनुयायियों का ये घर कहलाता है. यहाँ पहाड़, मोनास्ट्रीज, बर्फ से ढकी चोटियाँ, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. कुल मिलाकर ऐसी जगह हैं जिनको आप टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं. ये शांत पहाड़ी कस्बा बुद्ध के अनुयायियों की आस्था का एक प्राइम सेंटर है. सो बॉमडिला मोनास्ट्री यहाँ की सबसे फेमस जगहों में से एक है. इसे GRL मोनास्ट्री भी कहते हैं. ये मोनास्ट्री अगेन बौद्ध भिक्षुओं का घर है. यहाँ आपको शांति का एहसास होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा. आप बैठ के आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रकृति को निहार सकते हैं. आप यहाँ तिब्बती कल्चर और रिलीजन को जान सकते हैं, उनके रीति रिवाज और पूजा पाठ जिस तरह से वो करते हैं. जब आप जाएँ तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखें. तो मोनास्ट्रीज़ जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी का सेंटर हैं, लेकिन ये जगह खूबसूरत भी है. यहाँ पर है बॉमडिला व्यू पॉइंट. ये एक ऐसी जगह है जहाँ से सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है. इस व्यू पॉइंट से दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ आपको नज़र आएंगे. अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो इस जगह पर जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी. यहाँ आपको सुबह सुबह जाना चाहिए. जब आप यहाँ सनराइज़ होते हुए देखेंगे, सूर्योदय होते हुए देखेंगे, तो आपके लिए बड़ा अद्भुत ये एक्सपीरियंस होगा. कई लोग बताते हैं जो जाकर के आए कि यहाँ पहाड़ों पर से सूर्योदय को देखना अपने आप में गूज़बम्प्स वाला, यू नो, इमोशंस जो हैं वो आते हैं और लोगों की आंखें लिटरली भर आती हैं. इतना खूबसूरत नज़ारा देख करके खुशी के जो आंसू होते हैं वो होते हैं. अच्छा, इस बॉमडिला व्यू पॉइंट से भूटान और तवांग के बीच के रास्ते को भी देखा जा सकता है. हर किसी को लुभाने वाला बॉमडिला व्यू पॉइंट जो है वो नेचिपू पास पर पड़ता है. तो जब आप यहाँ जाएं तो मोनास्ट्रीज़ के साथ साथ यहाँ सनराइज़ होना, सनराइज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलें. बॉमडिला व्यू पॉइंट जाना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है. आप सुन रहे हैं ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी. मेरा नाम है अनामिका, इनका नाम है मोहित चौहान, जो आप गाने वाले हैं तुमसे ही. फिल्म का नाम जब वी मेट. सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.

फॉलिंग सो क्रेजी इन लव एंड टी एम ओ, ऐसे वर्ड्स जो है ना आप बोलेंगे बॉम डिला को देख करके. एग्जैक्टली बिल्कुल प्यार हो जाएगा, इतनी प्यारी ये जगह है. आप सुन रहे हैं ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी. बॉम डिला की हम बात कर रहे हैं. बॉम डिला जो कुदरती नज़ारों का घर है, आप वहाँ से लौट के भी आएंगे तो नज़ारे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आँखों में बस जाएंगे. एक्चुअली इन प्यारे प्यारे नज़ारों को छोड़कर कहीं और जाने का दिल भी नहीं करेगा. तो ऐसे ही खूबसूरत दृश्यों के लिए आपको आरआर हिल जाना चाहिए. आपको यहाँ से हिमालय का शानदार नज़ारा दिखाई देगा, दूर दूर तक पहाड़ नज़र आएंगे और इतनी प्यारी खूबसूरत जगह को देख करके दिल खुश हो जाएगा. आइडियल टाइम जो है वैसे अक्टूबर से मार्च के बीच का है, लोग यहाँ पर जाते हैं तो स्कीइंग भी वो कर सकते हैं. अगर आप नेचर लवर हैं, आपको फूल देखना पसंद है, वाइल्ड लाइफ से प्यार है, तो यहाँ पर है सेसा ऑर्किड सेंचुरी, किसी जन्नत से कम नहीं है. ये सेंचुरी जो है ऑर्किड के फूलों से भरी हुई है एक्चुअली, और इस सेंचुरी में लगभग 100 से भी ज़्यादा ऑर्किड की स्पीशीज़ है. मतलब 100 से ज़्यादा ऑर्किड फ्लावर्स आपको देखने को मिले अलग अलग जाति के. क्या चाहिए आँखों को, है ना. अलावा इसके यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ऑर्किड्स आपको लुभाएंगे. हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे कि जहाँ जानवर भी हों और इतने प्यारे प्यारे ऑर्किड के फ्लावर्स जो हैं वो खिले हुए हों. इसलिए बॉम डिला जब आप जाएं तो इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में रखना ना भूलें. देन कम्स दिरांग वैली. ये खूबसूरत जो घाटी है, वैली है, बॉम डिला और तवांग के बीच में है, और ये घाटी भी खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है. अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो दियारा वैली की सबसे ऊंची जगह तक आप ट्रैकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा दियारा वैली हॉट वाटर स्प्रिंग्स और एप्पल्स के बागों के लिए भी फेमस है. इस घाटी में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चिड़िया देखने को मिलेगी. मतलब आप बैठ करके बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं. बर्ड वॉचिंग करना मुझे भी एक्चुअली बहुत पसंद है. रंग बिरंगी चिड़ियाँ चहचहाती हुई रहें, उन्हें देखते रहो, उनके प्यारे से कलरव को, जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, उसको कानों में भरते रहो और आँखों में जो है उस सुंदर नज़ारे को भरते रहिए. कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना. मैं एक बात मानती हूँ जो शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम कहीं पर घूमने जाएं तो फोटोग्राफी करें, दैट्स ओके, वीडियोस बनाएं, दैट्स ओके, लेकिन कुछ देर के लिए फ़ोन को अलग छोड़ दीजिए और चुपचाप बैठ के उन नज़ारों को अपनी आँखों में कैप्चर कीजिए, अपने दिल में कैप्चर कीजिए. तब जा करके ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज जो हैं, स्मृतियाँ जो हैं, वो बनती हैं और आप उन चीज़ों को याद कर करके बार बार खुश होते हैं, है ना. तो बॉम डिला के बारे में बातें होती रहेंगी, अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर प्ले होते रहेंगे, जैसे अभी कमाल खान ऑन द वोकल्स. फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर. गाना बहुत अच्छा है, सुनिए.

0: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
1: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
2: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
1: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
2: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना। मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आया है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, यस विहार, स्वर्ण विहार, विप्र विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बगरू ग्रीन्स, द रिंग एवेन्यू, अभयपुरा, अनंतपुरा, ईपला, हर्ष वाटिका, निलय कुंज, रियासत रेजिडेंसी, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, दीनदयाल नगर, विद्याधर नगर, हनुमान नगर, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलारा, गोविंदम आश्रम, खंडवास, आनंद लोक, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आदिनाथ सरोवर, संतोष विला, दहमिकला, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा सितंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: What if something as simple as breathing could help you live better? We breathe every moment, but have we ever truly learned the art of breathing? Pratibham Charitable Trust brings a special 3-day breathing camp to Jaipur from 18 to 20th September at Hotel Jaipur Ashok. For registration, call 94141-16837. Pratibham Charitable Trust. Breathe better, live better.
4: Radio Pink City 100.3 FM सुनते रहो।
5: आप सुन रहे हैं ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी। बॉमडिला की हम बात कर रहे हैं। बॉमडिला में एक और बड़ी प्यारी सी कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिनको गोम्पा कहा जाता है। 3 गोम्पा हैं, निचला गोम्पा, मिडिल गोम्पा और ऊपरी गोम्पा। तो बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए ये गोम्पा जो है वो आस्था का केंद्र है, लेकिन इसकी जो बनावट है गोम्पास की, ये बेसिकली सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। लोअर गोम्पा को इस कस्बे का दिल कहा जाता है और बाजार के बीचों बीच बने इस गोम्पा में एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाते हैं। यहाँ पर एंट्री भी फ्री है, इसलिए अगर आप बॉमडिला विजिट करते हैं तो गोम्पा, निचला गोम्पा आप देखने जाएं। देन कम्स मिडिल गोम्पा। ये बॉमडिला का सबसे पुराना गोम्पा है जो बाजार से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। और यहाँ पहुँचने के लिए भाई साहब आपको 2 किलोमीटर्स की खड़ी चढ़ाई करनी होगी, उसके बाद आप मिडिल गोम्पा पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ का नज़ारा देख करके आपकी सारी थकान जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही प्यारे, सुंदर, खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ से नज़र आएंगे। देन कम्स अपर गोम्पा। बॉमडिला की सबसे फेमस जगहों में से एक है। बॉमडिला में टूरिस्ट इस जगह पर ज़रूर आते हैं। अपर गोम्पा मेन मार्केट से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। ये गोम्पा 15th सेंचुरी में बनी दक्षिणी तिब्बत की तोसना गोंटसे मोनेस्ट्री की कॉपी है। और इस गोम्पा में भी प्रेयर हॉल्स हैं, कुछ कमरे हैं यहाँ जहाँ पर बौद्ध अनुयायी रहते हैं। शानदार बात अच्छी ये है कि यहाँ से बॉमडिला का नज़ारा आपको दिखाई देगा और बड़ा ही दिल को लुभा लेने वाला नज़ारा है। तो अगर बॉमडिला जा रहे हैं गोम्पास देखना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सा गाना आपके लिए प्ले करती हूँ। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, जैसे ये गाना खास है। शफकत अमानत अली ऑन द वोकल्स, फिल्म का नाम बर्फी, म्यूजिक प्रीतम का, और क्या शानदार गाना है, सुनिए।

It's 11:56 and 30 seconds by the studio clock. आप सुन रहे थे Global Journey with Radio Pink City. हम बॉम डिला की बात कर रहे थे और अब बॉम डिला आप जरूर जाइएगा, अपनी बकेट लिस्ट में रखिएगा. इसी अनुरोध के साथ अनामिका आपसे लेगी इजाजत. होगी आपसे फिर मुलाकात, पुनः मुलाकात और जल्द होगी मुलाकात. तब तक अपना ख्याल रखिए और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं. जाते जाते एक और आखिरी गाना आपके लिए प्ले करूंगी, बड़ा प्यारा है, जरूर सुनिए. और सुनते रहिए जयपुर के दिल की धड़कन, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम एफएम रेडियो पिंक सिटी। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान

0: की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का समिति सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। लिखा है इसे निदा फाजली ने।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। निदा फाजली के बोलते खयाम का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अधूरा आदमी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
3: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ, प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
4: 9772097720।
5: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ, सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: नमकीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
6: देखो जी बहार आई, गांवों में
5: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
7: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
5: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
8: तुम्हारी याद सताती है।
5: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल। अब ये प्रोग्राम खत्म हुआ। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3।

0: Have we ever truly learned the art of breathing? Pratibhim Charitable Trust brings a special 3-day breathing camp to Jaipur from 18th to 20th September at Hotel Jaipur Ashok. For registration, call 94141-16837. Pratibhim Charitable Trust. Breathe better, live better.
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। इन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केशाऊ बांध परियोजना को लेकर आज नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश अपने हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान को देगा। इसके बदले दिल्ली और राजस्थान हिमाचल के हिस्से की बिजली लागत वहन करेंगे। गौरतलब है कि केशाऊ बांध यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस पर बनाया जा रहा है। इससे यमुना बेसिन में पानी का बहाव बढ़ेगा, जिससे दिल्ली सहित अन्य राज्यों में पानी का संकट दूर हो सकेगा और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक के लेन देन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से लेन देन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। इनमें विशेष रूप से रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और यूपीआई से 2000 रुपए तक के लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले महीने सरकार ने स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं से यूपीआई पेमेंट पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकों से भारत की शाश्वत लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को अपनी लोकतांत्रिक परंपरा पर गर्व है। इधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में आयोजित भारतीय युवा संसद कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है।
1: लोकतंत्र दिन एक देश या किसी क्षेत्र की संपत्ति नहीं, बल्कि ये जनता की स्वेच्छा से व्यक्त की गई इच्छा पर आधारित एक सार्वभौमिक मूल्य है। सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार और सम्मान।
0: राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के तहत प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर की गई थी। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देने के साथ ही संस्कृति को समृद्ध करने और राष्ट्रीय एकता में दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए दूरदर्शन 100% आबादी तक पहुंचने वाला संचार माध्यम है। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है। भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया की जयंती को इस दिन के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। हर साल इस दिन इंजीनियरों की भूमिका को सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया विलक्षण इंजीनियरिंग प्रतिभा थे। राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी दूरदृष्टि हमेशा नागरिकों को प्रेरित करती रहेगी। संवत्सरी पर्व आज मनाया जा रहा है। जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण महापर्व के अंतिम दिन संवत्सरी मनाई जाती है। इस अवसर पर उपवास सहित विविध प्रकार के तप किए जाते हैं। इसे क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको जोड़ते हैं राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से, जहां आप सुनेंगे प्रोग्राम सुरीला सफर।

शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था, पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द और लंबी तादाद में जवाब दिया, शशि कपूर और राखी, राखी डबल रोल में। एक श्रोता की टिप्पणी है, मुझे तो चांद बहुत सुकून देता है, शायद इसलिए इसको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कल शाम तीज पर्व पर अपने हमसफर के साथ दूसरी मंजिल की खिड़की में चांद को निहार रहे थे, तब हम बीते बरस के अनगिनत रंगों में सराबोर होकर गुनगुना रहे थे, खुद पे इतराते हुए, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, मनमीत के साथ बिताए पलों को याद करते, कब रात बीत गई पता ही न चला, सहसा चिड़िया चहकने लगी, कितना सुकून था उन पलों में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि रात के हम सफर थक के घर को चले, फिर चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, ये तो कहो कौन हो तुम, कोई मतवाला आया, जरा सी आहट होती है आज मदहोश हुआ जाए, बेताब दिल की तमन्ना हो, दिल की तमन्ना थी मस्ती में। क्या बात है भाई, आपने तो बहुत सारे गानों के बोल लिख डाले हैं और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। ज़रा अब अगली फिल्म के लिए लिखिए कि ये फिल्म आपने कब और कहाँ देखी थी, एक बात। दूसरी बात, कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन, किन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, कोई बात नहीं, जो जवाब आपको सूझे वो दीजिए।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी और जॉय मुखर्जी आशा पारेख पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया और बहुत जल्द जवाब आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की इबारत सुरमई पुकार है, जब चांदनी रात में किसी गीत के वादी संवादी सुर मिलकर सतरंगी आसमान खोलते हैं, यादों की खिड़की खोलकर जब कोई मतवाला मनमीत द्वार पर दस्तक देता है, तब रूह का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठता है। जीवन के अनगिनत रंग लिए इन गीतों में उड़ने को अनंत खुला है और डूबने को अतल गहराइयां भी। चांदनी रात में गीतों की तान जब सोए कंदीलों को जगा देती हैं, तब हम सफर के साथ तारों जड़ी ओढ़नी ओढ़कर कोई प्रियतमा पैरों के झांझर उतार, बेताब दिल की तमन्ना लिए किसी योगी की तरह गीत की तरंग में ध्यानस्थ हो जाती हैं। गीतों की मीठी विकल पुकार के साथ पलके नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मन को पंख और कल्पना को परवाज देते अमर और मधुर गीतों की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। क्या बात है भाई, बहुत ही ललित भाषा में आपने ये इबारत लिखी है और बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि यादों की खिड़की खुली तो जीवन के अनगिनत रंग नजर आए, मनमीत की मीठी यादें मन में हलचल मचाने लगी, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, ओ मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र, बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन टिप्पणियों के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने आपसे कहा कि आप भी इबारत लिखिए तो आप सभी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं लिखी है इबारत वो भी लिखें और जो शब्द हमने दिए हैं उन शब्दों को शामिल करते हुए भले ही दो तीन लाइन की इबारत लिखें, हम जानना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के भीतर एक कहानीकार छुपा होता है, कवि छुपा होता है, जिन्हें बस कहने की ज़रूरत होती है, तो टटोलिए कहीं आपके भीतर भी कोई कथाकार तो नहीं छुपा। फिलहाल चलिए अगला गाना सुनते हैं, बूझना है आपको फिल्म का नाम। बहुत आसान सवाल है, फिल्म का नाम बूझना है और फटाफट बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर चाहें तो गीतकार का नाम भी बूझ सकते हैं और ये भी बताइएगा कभी आपने गुनगुनाया है इस गाने को।

फिल्म थी दी ट्रेन और यही था हमारा सवाल। श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने बहुत जल्द लिख दिया दी ट्रेन यहाँ कि मैंने पूछा और उधर उनके जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप फौरन जवाब देते रहिए और हम आपकी टिप्पणियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। जिन्होंने इबारत नहीं लिखी है वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लंबी इबारत लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लव इन टोक्यो के लिए कि ये बड़ा ही बेहतरीन गाना है। इस गीत में किसी प्रिय के आने की खुशी, मन की हल्की सी शरारत और प्रेम की मीठी आहट महसूस होती है, जैसे किसी की दस्तक से अचानक सूना सा मन भी खिल उठे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, सुनते ही लगता है जैसे कोई चुपके से मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। गीत की मिठास लता जी की आवाज़ मिलकर प्रेम की ऐसी हल्की सी आहट देती है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, सोचा दर्शन के बाद रोज़ के कामकाज यानी दुकान खोलने के लिए। दर्शन करने के बाद रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया, कहने लगा बहुत दिन हुए कोई फिल्म देखने चली, मॉर्निंग शो में राज कपूर जी की फिल्म चल रही है आवारा देखी। लगता है कोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई। और ज़रा बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए, कहीं आपकी प्लेलिस्ट में यही गाना तो नहीं जो हम सुनवाएंगे, ज़रा बूझिए ये भी। और अगले दो तीन गाने आप सुझाइए, हम आप जो सुझाएंगे गाना वही गाना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ इबारत वाले शब्द होने चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मेरा मनमीत जो मुझे अनायास एक चांदनी रात में ट्रेन के सफ़र में मिल गया, एक रात के लिए मेरा हम सफ़र, ट्रेन की खिड़की यादों की खिड़की बनी, कितनी अनकही बातें जबान पर आ गईं और ट्रेन रुकी उसको जाना था मुझे भी, अब के बिछड़े कभी न मिलने को। चलिए अब बारी है गाने की, गाना सुनिए और बूझिए ज़रा फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम, साथ में गीतकार का नाम, देखते हैं गीतकार का नाम सही बता पाते हैं आप या नहीं।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने गीतकार का नाम पूछा था, बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, कुछ अधूरी रह गई तमन्नाओं के जख्मों को नगमे अपनी मरहम से नासूर बनने से रोकती है, एक ऐसा ही गाना है। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि खो जाती सुधबुध जब खुलती यादों की है वो खिड़की, इस चांदनी रात की शीतलता अंतर मन को है छूती, वो हम सफर बना मनमीत जब चले हैं बन साथी, जीवन के अनगिनत रंगों की परिभाषा तब है सजती। भाई जो आपने इबारत लिखी है उसके जो शब्द मैंने दिए थे उन शब्दों से गीत के बोल नहीं लिखे, ज़रा वो शब्द टटोलिए और उसके गीत भी लिख डालिए। अभी हमने आपसे पूछा था कि कौन से वो गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं इस समय, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने नहीं लिखा है, तो हम जो गाने आप लिख रहे हैं वही गाना हम अगला सुनवाएंगे। उसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं ज़रा फिल्म का नाम ज़रूर लिखिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गीत सिर्फ कागज़ पर लिखे शब्द न रहकर सुरों की सांसें पाते हैं तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। हिंदी के सुरीले और ललित गीतों का यही तो जादुई असर है। इनमें कहीं किसी की यादों की महक है, कहीं पहले मोहब्बत की मासूमियत है, तो कहीं तन्हाई का सुकून भरा सन्नाटा है। कभी कोई धुन दिल के सुनेपन को गुदगुदा जाती है, तो कभी कोई बंदिश आंखों में गुजरे जमाने की कोई खास तस्वीर सजा देती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं आप, जरा छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो सके। अब जरा सुनिए ये गाना, आप सभी की ओर से गाना आया है, बताइए फिल्म का नाम और गीतकार संगीतकार का नाम भी। इबारत में कौन सा शब्द है जिसके जरिए ये गाना सुनवाया जा रहा है।

0: आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुँचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफ़र और विविध भारती सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियाँ चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है 7:00 PM, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज़ होते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कह नहीं पाते मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है। तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मनमीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं ज़रा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का नाम नहीं लिख रहे हैं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी नैयर, रवि जयदेव, एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। जब हम कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफ़र साथ हो तो सिर्फ सफ़र रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफ़र बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है और हमारे पास ये गाना है, तो ज़रा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का।

अमृत कृष्णा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, संगीतकार थे शंभू सेन, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और बहुत जल्द जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नगमों की दुनिया निराली होती है, कुछ नगमे तराने बन दिल की देहरी लांग ताऊ उम्र साथ चलते हैं, कुछ पुरानी अधूरी यादों को दस्तक दे जाती हैं, कुछ तन्हाई के आलम में हम सफर अतीत वर्तमान और आगामी अनंत काल तक एक सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारी कविता, जीने के अनेक ढंग हैं, जीवन के अनगिनत रंग हैं, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन मीत चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी, खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो, हम सफ़र के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है, जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफ़र आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है, कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है, जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ नगमे गाए थे हम सफ़र मेरे, और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बूझिए ज़रा गीतकार संगीतकार का नाम। फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है, वाह वाह वाह जबरदस्त गीत। एक श्रोता ने लिखा, वाह क्या गीत है, तेरी एक नज़र की बात है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूठ जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है, नूतन बुआ जी, शेखर जी, मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है, वाह वाह। तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं, वाह वाह, और आप सभी की पसंद का हो, तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हम सफ़र बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं तो कभी हम सफ़र का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है। तो देखिए, आपने भी चुना था क्या ये गाना? ज़रा फिल्म का नाम बताइए और आवाज़ें किसकी है बूझिए ज़रा। बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं, अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम वही गाना बजाएंगे जो आप चाहेंगे सुनना।

पूर्णिमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी रात में, ये वाला गाना। लेकिन और भी गानों के लिए जिक्र किया है श्रोताओं ने, तो हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं। तो ज़रा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफ़र का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आ पाएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज़ एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज़ हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज़ में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं। हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और ज़रा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है, बूझिए फिल्म का नाम। गाने के बोल तो समझ गए होंगे ना अब तक, या अभी नहीं समझ में आया, इंतजार कीजिए अभी बोल आ ही जाएगा।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
3: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ, प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
4: 9772097720।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार ना हों या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय। चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी तो ऐसा काजी है हर, मौका मिले तो भगवान भेंट खाए।
0: मौका मिले तो भगवान भेंट खाए। हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में जूते

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना मुश्किल बनता जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए एक ही विषय की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर यहां से वहां जाना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में टेक्नोलॉजी काम आती है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी होगी।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम हैं।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
6: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
7: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
8: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
9: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके।
10: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
11: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
12: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
13: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं।
12: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, यश विहार, स्वर्ण विहार, विप्र विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बगरू ग्रीन्स, द रिंग एवेन्यू, अभयपुरा, अनंतपुरा, ईपला, हर्ष वाटिका, निलय कुंज, रियासत रेजिडेंसी, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, दीनदयाल नगर, विद्याधर नगर, हनुमान नगर, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलारा, गोविंदम आश्रम, खंडवास, आनंद लोक, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आदिनाथ सरोवर, संतोष विला, देहमीकला, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा सितंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: जागृवी चूर्ण, कब्ज व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृवी चूर्ण। मल का सख्त आना, एक या दो दो दिन तक ना आना, गैस, एसिडिटी इत्यादि का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृवी चूर्ण।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है और धुन बनाई है वसंत देसाई ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका हैं सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कहिए आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक सकारात्मक अपने अंदर आते हैं ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
2: है
1: बिल्कुल।
2: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहाँ भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहाँ पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
1: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम ना, जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना?
2: बिल्कुल,
1: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहाँ जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
2: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना, आज आप क्या विषय लेकर आई,
2: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेकर आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
1: ओहो,
2: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
1: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर, और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले हम पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हमें इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है, है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
2: जी। तो और हम सिर्फ अभी मुंह से ही जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
1: हाँ,
2: तो

0: ये
1: और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में कितनी सहन शक्ति बची है।
0: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
1: क्या बात है।
0: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
0: हर जगह
1: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है यार।
0: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ चीज कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
1: और बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
0: बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
1: जैसे
0: कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का। बिल्कुल अजीब अजीब, सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
1: अच्छा।
0: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर, तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है।
0: जी।
1: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ और कोई ऐसी चीज मिलाके खाते हैं,
0: अजीब
1: होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत,
1: बहुत है ना? प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा,
0: माना जाएगा।
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं यहीं से शुरू हो जाती है, है ना? सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को। हाँ? बहुत छोटा सा उदाहरण है। हाँ? आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए, एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं, ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई आज क्या बनाना है, तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है।
1: हाँ।
0: और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है। हाँ। है ना? लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और असंतोष घर में
1: प्राप्त
0: हो जाता है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं। यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती हमें, ये अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश की गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं, और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते हैं,
0: ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही
1: बहुत
0: है।
1: बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते हैं, है ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहां कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है, पैसा,
1: बिल्कुल,
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती,
1: क्योंकि अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोच कर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी
0: बिल्कुल बात। और कि वही मालिक भी बने, हम क्या सोचते हैं काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाएं।
1: जी,
0: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1,000 रुपए का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। और यही रंग सूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंग सूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंग सूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी
1: जी।
0: और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी, बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक साथ लाने की। और रंगसूत्र से जुड़े कार्यक्रमों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल, और यानी जो महिला है उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया, बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल,
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल, और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा, तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुमिता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है, है ना, और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन सबका भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में। हाँ,
0: इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी है जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती है और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए,
0: हम
1: अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। और अभी क्या जरूरी है?
1: अंतराल।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: जागृवी चूर्ण, कब्ज व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार। जयपुर का जागृवी चूर्ण, मल का सख्त आना, एक या दो दो दिन तक ना आना, गैस, एसिडिटी इत्यादि का आयुर्वेदिक उपचार। जयपुर का जागृवी चूर्ण।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं.
1: हाँ बिल्कुल.
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं.
1: जी.
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पे लिख दो, एक डायरी मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक संकलन के रूप में आ जाए.
1: आ जाएगी. और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज़, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता
0: हाँ.
1: है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो बहुत ज़रूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप लेखक नहीं भी हैं, तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज़ पेन निकाला और उस गुस्से को कागज़ के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार कागज़ पे वो गुस्सा उतर जाएगा.
1: बिल्कुल. आप बाद में से इरेज कर सकते हैं.
0: हाँ, उसे मिटा सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज़ को कि आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन मन आपका शांत हो जाता है. तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है. और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है. अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं. सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं. मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है.
1: बिल्कुल. अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो वो लड़ रहे हैं. मतलब कोई भी किसी भी बात पर हम लड़
0: मतलब
1: सकते हैं.
0: हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रहे हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना.
1: बिल्कुल. और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है. और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए. कोई भी बात हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो सकते हैं, दोस्ती टूट सकती है. तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी सोच समझ
0: इसलिए तोल मोल की बोल कहा जाता है ना. और आज की जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई. एक क्लिक में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ, कुछ भी कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है. एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा. अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है और सामान आपके घर पर आ जाता है.
1: 5 मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा, तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं. फिर हम उसको फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया. सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है. तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है.
1: बिल्कुल. और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है, तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
0: क्या बात
1: लिखा था, क्यों नहीं आया उसका जवाब. शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है. हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो, या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो. हमने उसका तुरंत अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला. और
1: हो सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस समय,
0: ये भी हो
1: कुछ सोचना चाह रहा, समझना चाह रहा, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है. तो सहनशीलता की जो कमी है, वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते ही हैं. और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है, यही जिम्मेदार होती है.
1: बिल्कुल. सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है. अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते कि उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
1: सबका अपना अपना नजरिया
0: विचार हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति, और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक

0: दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
0: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता, आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
1: एक अलग पहचान बनाती है कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े,
0: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी बड़ी बात है। इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद ही चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
1: चुप बैठना है सबसे बड़ी ताकत,
0: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिला कर रख देती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें और कम बोलें, सोच समझ कर बोलें, तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
0: वो ये होता,
1: तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है क्या है, तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए,
0: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है। सहन करने की अपनी एक गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं,
1: है ना। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है, कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
0: और हमारी एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट्स हैं उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
1: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि जहाँ सहनशीलता है वहाँ प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम जो सोच समझ के लिखते थे, दो दो तीन तीन दिन में खत
0: पहुंचते थे
1: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते हैं,
1: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन सच में मजा आता है,
0: मजा आता है। तुमने खा के देखा है इसका मतलब?
1: मैंने खाया है
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसे भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ, कैसे, जलेबी को सॉस में
0: डुबोकर
1: जी
0: और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है। तो हम अच्छा। उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो अच्छा। लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं उन्हें खाती थी। तो अच्छा। ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग, दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने, जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हों लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदतें, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कै जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी। और एक हमारी सखी हैं जो लिखती हैं कि सखियों कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया है। तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई, इसका मतलब। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी, ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा। तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ। बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपने अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने आए वहाँ के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी, सर्दी गर्म नहीं होता है, बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफ़ी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदतें हैं आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों।
1: बिल्कुल नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीज़ें खाने की, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती,
0: लेकिन हमें तो हो जाती है। अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना नहीं सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना मुहावरों की दुनिया।
1: क्या बात है, हाँ हाँ।
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना यानी चुगली करना। मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेन्द्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं इसको?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कई इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
2: जागृवी चूर्ण, कब्ज व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृवी चूर्ण। मल का सख्त आना, एक या दो दो दिन तक ना आना, गैस, एसिडिटी इत्यादि का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागृवी चूर्ण।
3: व्हाट इफ Something as simple as breathing could help you live better? We breathe every moment, but have we ever truly learned the art of breathing? Pratibhim Charitable Trust brings a special 3-day breathing camp to Jaipur from 18th to 20th September at Hotel Jaipur Ashok. For registration, call 94141-16837. Pratibhim Charitable Trust. Breathe better, live better.

0: लगता है ये सब देखकर।
1: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
0: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
1: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ,
0: जी
1: तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल, तो मैं करूँगा
0: तो इसी बात पे एक गाना हो जाए आपकी पसंद का।
1: ज़रूर।
0: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
1: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था,
0: जी
1: तो उस ज़माने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी, शंकर हुसैन, उसमें एक गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी
0: और बहुत समय लगा, मुझे लगता है पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: ओके, कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग काफ़ी देर तक बनाते रहते हैं, तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफ़ी टाइम ले लिया। और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिसिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था,
1: जी उसी
0: उसी
1: गांव
0: से बात बनी
1: जी
0: ना?
1: जी जी उससे काफ़ी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह,
1: नहीं,
0: तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है। मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपके चलते हैं, चल रहे हैं, आपका काम अप्रिसिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए, बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं,
0: जी
1: आपके पास अगर पहले दो मरीज आएँ और वो आपके हाथों मारे जाएँ, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत
1: है।
0: किए।
1: जी
0: शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की,
1: जी माचिस हाल में
0: एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और
1: ये आप
0: सीरियल
1: शिकायत कर रही हैं, ये बता रही हैं, मुझको समझ
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी
1: नहीं
0: ऑन करती हूँ तो आप ही
1: यार
0: आप दिखाई
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो
0: देते
1: असल
0: हैं।
1: में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है। पर मैं ज़्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे। हाँ,
0: अच्छा, एनीवे
1: तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है
1: नहीं,
0: क्या?
1: अभिनय में फ़र्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो और है भी थोड़ा सा। वहाँ पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर
0: लाउड
1: में।
0: होता
1: जी
0: है
1: हाँ, थिएटर में।
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ, टेलीविज़न और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फ़र्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविज़न का है वो क्लोज़र मीडियम है शॉट्स का। लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ, आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहाँ निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता
0: फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
1: है। क्यों क्यों हम
0: कैरेक्टराइजेशन
1: लोग टेलीविज़न
0: पर
1: में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविज़न में ज़्यादा ऑथेंटिसिटी
0: ज्यादा
1: दिखाते
0: होती
1: हैं।
0: हैं। यही बात तो
1: बिल्कुल
0: उगलवाना चाह रही थी
1: गुस्सा आ गया मुझे गुस्सा दिलवा के है
0: अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल बनने
1: हाँ
0: शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर इसे, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
1: देखिए, मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं। मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया। लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविज़न पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविज़न जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन हैं। आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज़ अ ग्रेट मैजिक, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज़। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविज़न में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविज़न में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविज़न में नहीं आना चाहते, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी बात पे, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
1: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं।
0: जो आपको पसंद हो।
1: गालिब की एक गज़ल है, मुझे बड़ी पसंद है, और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
0: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं, उसी फिल्म से आ रहे हैं। सीधी बात है।
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है,
1: नहीं रोजी रोटी का शायद भाई, वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस,
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली
0: है ना,
1: जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप? पॉपुलर हर जो चीज़ है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली,
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पर ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, ज़िंदगी का सफ़र तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या?
0: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है,
1: yeah.
0: तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को, किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
1: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो इसका मुझे अंदाज़ा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत ज़ात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
0: ताकत,
1: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज़ टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं। तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके जहन में घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ, मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए।
0: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
1: नहीं
0: पति के लिए?
1: नहीं नहीं, वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज़ अ होम बर्ड।
0: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
1: सुंदर सी बीवी के लिए।
0: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए कि नहीं?
1: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
0: कौन सी फिल्म का?
1: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी हाँ, क्योंकि मैं हूँ सहारनपुर का हूँ,
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई अंकल, ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूँ। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं IAS में जाऊँ, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे, और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फ़ैन था, देव साहब का फ़ैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फ़ैन होते थे, और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फ़ैन होते, तो बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे NDA का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं NDA में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था, उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था, तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई, तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना
1: नहीं
0: वहां पर?
1: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
0: नहीं,
1: नहीं इंस्टीट्यूट में
0: अच्छा।
1: स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
0: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा है आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीज़ें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: अच्छा, आजकल आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या
1: ये
0: ख्याल है इस
1: आप
0: बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
0: ऊंची
1: ऊंचे
0: है ना?
1: होंगे, क्योंकि
0: हाँ,
1: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था, उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
0: जी।
1: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
0: ओ
1: तो देखिए, एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़े आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है, एक 60वां भी होगा वहाँ, तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अबे तेरा नंबर 60 यहाँ आया, कहीं कोई और चीज़ जिम में ट्राई करेगा वहाँ नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, ये
0: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, चप्पा चप्पा कोशिश करते रहना चाहिए। इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना माचिस फिल्म में,
1: माचिस
0: हो जाए,
1: बिल्कुल हो जाए,
0: जलाइए चप्पा चप्पा चरखा,
1: जलाइए माचिस।
0: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले
1: जी।
3: जागरवी चूर्ण, कब्ज व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागरवी चूर्ण, मल का सख्त आना, एक या दो दो दिन तक ना आना, गैस, एसिडिटी इत्यादि का आयुर्वेदिक उपचार, जयपुर का जागरवी चूर्ण।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए
1: अब
0: गाना?
1: बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था। मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वही यूज़ टू एंजॉय दैट नंबर। तो वो सुनवा देते हैं।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर तो मैं ये भी
0: बीस
1: कर
0: पच्चीस साल हो गए
1: डालूंगा।
0: आपको लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। नहीं, अब देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मज़ा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए,
0: चांस लेना
1: गोताबाना हाँ चांस लेना चाहूँगा।
0: अच्छा,
1: व्हाई नॉट,
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी।
0: किसी में भी।
1: हाँ
0: अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि
0: आप बड़े आर्टिस्ट हैं भाई।
1: हाँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप, हाँ, मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ, देखिए, आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूँ डायलॉग लाइन को यूँ करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियाँ नहीं हैं, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियाँ,
0: जी।
1: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज़ जो है या ये लाइन, ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी, या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा ज़रूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा
1: पता
0: है
1: नहीं,
0: कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
0: वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: ना
0: अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की, और उसके आप तो बहुत सीढ़ियाँ आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ।
0: आप पीछे मुड़ के नहीं देखते?
1: मैं कोशिश कर नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज़्यादा नहीं हूँ।
0: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
1: हाँ, मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँ, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज़्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
0: वाह वाह,
1: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है
0: मतलब
1: जो
0: छैया छैया।
1: हाँ
0: तो
1: छैया
0: आइए
1: छैया
0: फिर सुनते हैं छैया छैया।
1: बेशक
0: हैं, आपको
1: बिल्कुल,
0: पसंद है ना?
1: बहुत पसंद है।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं।

0: इज ऑनर
1: नहीं ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूँ।
0: अच्छा
1: तो हाँ तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद ख़त्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मैं मुझे शौक है खेलने के। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं और टेनिस से बहुत लगाव है बहुत इश्क है और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे टूट जाते हैं
1: तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में या वो आपकी ही मदद करती रहती हैं?
1: नहीं मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि और अकेला रहा हूँ जिंदगी में लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: जी हाँ एक अभिमान कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग उनके साथ कर रहा हूँ मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी तीन ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई टेक ऑन एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को।
0: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप?
1: हाँ जितना अपनी पूरी एबिलिटी अपना पूरा कंसंट्रेशन में जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे आपको क्या पसंद है?
0: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
1: सत्ता जी हाँ जी
0: है ना
1: हाँ तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। चलिए साहब

0: अच्छा कमल जी,
1: जनाब
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ है इस काम से, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ हाँ
0: कुछ
1: बेकार
0: और
1: ही
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के,
1: बिल्कुल।
0: हैं
1: नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इससे
0: मतलब
1: अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाए,
0: है
1: अगर
0: ना।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा कई ऐसे भी डायरेक्टर
1: हाँ
0: हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहें काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो ज़रा रेपिटेटिव हो जाता
0: नहीं,
1: है।
0: मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
1: नहीं
0: गया
1: नहीं
0: कि मैं काम कर
1: मैं
0: लूं,
1: नहीं मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, या लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है?
1: नहीं,
0: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: ठीक
1: है। तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, यस विहार, स्वर्ण विहार, विप्र विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चितन विहार, अनुपम विहार, बगरू ग्रीन्स, द रिंग एवेन्यू, अभयपुरा, अनंतपुरा, ईपला, हर्ष वाटिका, निलय कुंज, रियासत रेजिडेंसी, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, दीनदयाल नगर, विद्याधर नगर, हनुमान नगर, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलारा, गोविंदम आश्रम, खंडवास, आनंद लोक, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आदिनाथ सरोवर, संतोष विला, दहमीकला, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा।

0: तुम्हारी ज़रूरत थी, ज़रूरत है और रहेगी। दुनिया लाख हसीन चेहरे दिखाए, दिल ने तुम्हें चुना, तो फिर किसी और की ख्वाहिश कहाँ रहेगी। एक ही शख्स में सब कुछ पा लिया, इश्क भी मोहब्बत भी, प्यार दोस्ती रूह का सुकून दिल का करार भी। तू मेरा अपना भी है और मेरी दुनिया भी, मैंने खुद को तुझ में पा लिया। अब अगर कोई पूछे कहाँ है मोहब्बत, जवाब होगा सिर्फ तुम।
1: कौन है जो सपना

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल

मुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे एक नज़र क्या देखा, दिल बगावत कर बैठा, फिर ना अक्ल ने साथ दिया, ना दिल ने कोई दलील मानी, बस एक तुम और तुम्हारी याद जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। ये मोहब्बत मेरे दिल की किस्मत बन गई, तुझे गले से लगाकर बताऊं कितनी रातें तेरी याद में जागकर गुजर गईं, तुझसे दूरी में कितनी बेचैनी, तन्हाई में कितने लम्हे तेरा नाम लेते हुए ठहर गए, काश

तू एक बार करीब आ बैठे, मैं लफ्जों के बगैर अपनी कैफियत सुना दूं कि तुम दूर होते हो तो जिंदगी सूनी बे नूर सी लगती है मुझे।

हम खामोश रहे और तुम बात समझते गए, हम नजरें चुराते रहे और तुम हाल पढ़ते गए, हम हाले दिल छुपाते रहे और तुम करीब आते गए, फिर बेपनाह इश्क हुआ और तुम दिल के मालिक बन गए। तेरे होने से जिंदगी में कोई सवाल नहीं, तेरा हाथ थामा तो सफर में कोई मलाल नहीं, तुझे पाकर अब किसी खुशी का इंतजार नहीं, राहे मोहब्बत में तू मिला तो दिल पे अब कोई अख्तियार नहीं।

0: पत्थर मुझे कहता है, मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ। उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।
1: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
2: 9772097720।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पलकों के किनारे जो हमने कभी भिगोए नहीं, उन्हें ये लगता है कि हम कभी रोए नहीं। पूछते हैं किसे देखती हो ख्वाबों में, उन्हें क्या खबर के हम बरसों से सोए नहीं। दिल में छुपा है जो जुबां से कहें कैसे, मोहब्बत है तुमसे अब ये बताएं कैसे। जज्बाए इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है, सांसों का सफर तुमसे तुम तक है। हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है। दिल जिसे भूल नहीं सकता वो धड़कन हो तुम, तुमसे है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत हो।

तुम से मिलने की ख्वाहिश भी अजीब ख्वाहिश है। दिल ने हर ख्वाब में तुमको पुकारा है। तुम आओ करीब तो वक्त ठहरने लगता है। तुमसे बिछड़ना दिल को कहाँ गवारा है। ना तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश, ना भूलने का हुनर। तुमसे जुड़ी मेरी हर बात अब किसी बात की तमन्ना नहीं दिल में। तुम मिले तो मुकम्मल हुई मेरी तन्हाई। तुम मिले तो मुझे खुद से भी हुई मोहब्बत। तुम्हारा जिक्र हुआ तो महक गई तन्हाई। जैसे खामोश फिजा में उतर गई रानाई। तेरी आवाज में कुछ पाया ऐसा सुकून, जैसे धड़कते हुए दिल को मिले अपनी गहराई। तुम्हें सोचा तो लगा वक्त भी ठहरने। दिल ने इश्क की एक नई दुनिया बसाई।

दिल से उतर कर दिल में ही रहा करते हैं, कुछ ताल्लुक भी अजीब हुआ करते हैं। लोग चेहरों से मोहब्बत का सबक पढ़ते हैं, अपने दर्द को दिल में ही छुपाए रखते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुरा के हाल हमारा, दिलों में तूफान लब पे खामोशी रखते हैं। वफा के नाम पे ये जो जख्म मिल गए हमको, उन्हें दिल में तुम्हारी अमानत बनाए रखते हैं।

0: तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
4: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
5: 9772097720।
6: What if something as simple as breathing could help you live better? We breathe every moment, but have we ever truly learned the art of breathing? Pratibhim Charitable Trust brings a special 3-day breathing camp to Jaipur from 18th to 20th September at Hotel Jaipur Ashok. For registration, call 94141-16837. Pratibhim Charitable Trust. Breathe better. Live better.

तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह

0: सरकार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थी। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
3: MA कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
4: क्या बात है।
3: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
3: ट्यूशन जिन्हें कहें ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने नए पुराने, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। शाम के 6:30 होने को हैं और थोड़ी देर में सुनिए पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर होगी जिले की चिट्ठी, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का बड़ा आधार बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में DRDO और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MOU पर हस्ताक्षर किए। किशाऊ परियोजना यमुना की प्रमुख सहायक टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को इसका लाभ मिलेगा। परियोजना से राजस्थान को 124 MCM पानी आवंटित होगा, जिसे हरियाणा के हांसी वासी से चूरू तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की योजना है। इससे सीकर, चूरू और झुंझुनू सहित शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों की सहमति से दशकों से अटकी परियोजनाओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने समझौते को राज्यों के आपसी सहयोग की मिसाल बताया।
1: मित्रों, हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी, क्या आज उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन 6 राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण संबंधी लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी निकालने के लिए 17 सितम्बर तारीख तय की गई थी। वहीं सरपंच और वार्ड पंच के लिए लॉटरी निकालने के लिए तारीख 18 सितंबर रखी गई थी। विभाग के उप शासन सचिव जसवंत की ओर से आज सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर इन तिथियों पर लॉटरी निकालने के लिए काम को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में जिला स्तरीय अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण ये निर्णय किया गया है। विभाग की ओर से आरक्षण लॉटरी निकालने के लिए नई तारीखों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों को अलग से अवगत कराया जाएगा। राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में 25 सितंबर से आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और सहयोगिनियों का सम्मान किया जाएगा तथा बच्चों के लिए पेंटिंग, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियां होंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को लेकर संवाद आयोजित करने तथा इस क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश और बच्चों द्वारा तैयार पुस्तक भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा इन सेवाओं की पहुंच तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। यूनिसेफ इंडिया के उप प्रतिनिधि जेस्पर मॉलर ने आज जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से मुलाकात के दौरान इस संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित और संवेदनशील वर्गों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने तथा नवाचारों को बड़े स्तर पर लागू करने पर जोर दिया गया। श्री मोलर ने प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन में बाल अधिकारों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि सबके लिए न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। श्री बागड़े ने ये बात आज जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भारतीय युवा संसद के 31वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संवाद और लोगों में विश्वास पैदा करने से मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा में मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव मुख्य बिंदु हैं।
2: एक तय मॉडल नहीं है, हो सकता है कि मैं सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश ने अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीआरडीओ और उद्योग जगत के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने आज ये बात नई दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की है।
3: जीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित ड्रोनाथॉन 2026 का आज दूसरा दिन है। तीन दिन के इस आयोजन का उद्देश्य मानव रहित प्रणाली उद्योग के साथ सीधे संवाद और वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में स्वदेशी तकनीकों की क्षमता का आकलन करना है। ड्रोनाथॉन में देश के मानव रहित प्रणाली क्षेत्र से जुड़ी 20 से अधिक रक्षा कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमई, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवोन्मेषक हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे पर देश के सभी इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महान इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियर बेहतर भविष्य के निर्माण, नवाचार और समाधान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सर एम विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग प्रतिभा और राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि आज भी सभी को प्रेरित करती है।
4: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: प्रदेश में इंजीनियर्स डे पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर में अभियंता फोरम की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। पाली में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी गईं। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में एक विशेष स्वच्छता अभियान के तहत ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू करेंगे। इस पोर्टल के जरिए 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये 6ठा विशेष स्वच्छता अभियान है। इसमें नागरिकों से जुड़ी गतिविधियों और अच्छी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के साथ ई वेस्ट के संग्रह, उसे अलग करने और उचित निपटारे पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विभिन्न स्कूलों में आज विधिक जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में आज पाली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विक्रम सिंह भाटी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बाल तस्करी, अपहरण और मानव तस्करी से जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी बताया। वहीं सवाईमाधोपुर में स्कूलों में शिविर लगाकर न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए URATPG के दूसरे चरण के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब कल शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 17 सितंबर तक जमा की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा संयोजक डॉ. नीकी चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यार्थियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी निकालने का काम अब नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने न्याय, शांति और विकास के प्रति समर्पण को लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में DRDO और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं चिंतन जोशी। अरावली पहाड़ियों की गोद में सोम और माही नदियों के पास बसे डूंगरपुर जिले में बीते दिनों कई गतिविधियां हुई। जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे निकाय चुनाव और परिणाम की, गणेशोत्सव और जन्माष्टमी की, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाई जा रही जन जागृति मुहिम की। साथ ही बात करेंगे विकसित भारत जन सेवा अभियान की। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले डूंगरपुर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव की बात करते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में से 24 में भाजपा ने जीत दर्ज की। पार्टी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं कांग्रेस ने 12 और BAP ने 3 तथा 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। यहां पहले चरण के तहत 9 सितंबर को मतदान हुआ। वहीं सागवाड़ा नगर पालिका में दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर को वोट डाले गए। यहां 35 वार्डों के लिए लोगों ने मतदान किया। इसमें 23 में भाजपा ने जीत दर्ज की। 8 वार्डों में कांग्रेस और 4 में BAP विजयी रही। डूंगरपुर नगर परिषद में लगातार 8वीं बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में पिछले दिनों जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। जल जीवन मिशन के तहत हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर ने की। इस दौरान हर घर नल कनेक्शन और अन्य कामों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में CEO ने कहा कि जिन गांवों में हर घर जल का काम पूरा हो चुका है, उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। साथ ही इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए। श्री राठौड़ ने अधिकारियों को जल सेवा आकलन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले में विकसित भारत जन सेवा अभियान की तैयारियां की जा रही है। 17 सितंबर से शुरू होकर ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। अभियान के तहत जन सेवा से जुड़े अनेक कार्यक्रम रखे जाएंगे। इनमें रक्तदान शिविर, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रेरणादायी वीडियो प्रदर्शन के अलावा रैलियां भी होंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और आंगन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और श्रमदान तथा सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। इस मौके पर निबंध प्रतियोगिता भी रखी गई। इसमें मनीष यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया, अरुण कुमार रोथ दूसरे और हिमांक चौबीसा तीसरे स्थान पर रहे। जिले के बिच्छीवाड़ा क्षेत्र के रातापानी में पिछले दिनों एक पेड़ मां यशोदा के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी सचिव और आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने की। इस मौके पर उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 25 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए। महिला अधिकारिता और समेकित बाल विकास विभाग ने पिछले दिनों डूंगरपुर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। कालीबाई भील उड़ान योजना के सुचारू संचालन के लिए ये शिविर रखा गया। इस दौरान महिला पर्यवेक्षकों को संबंधित पोर्टल के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने उन्हें पोर्टल की कार्यप्रणाली का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों डूंगरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट के बारे में बताया। अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर चयनित टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। शीर्ष टीमें जिला और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जिले में कई कार्यक्रम हुए। विभिन्न विद्यालयों में सम्मान समारोह रखे गए। बीलड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता हुई। बाल विवाह की रोकथाम में शिक्षकों की भूमिका विषय पर हुई इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमाओं को विराजित किया गया। विभिन्न गणेश मंदिरों और पांडालों में गणेश स्तुति हुई। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी जी। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण री लॉटरी, नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी भया पाछे निकाली जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े न्याय शांति और विकास रा प्रति समर्पण ने लोकतंत्र री मोटी बुनियाद बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी री देश ने रक्षा विनिर्माण रो वैश्विक केंद्र बनावन माए खास भूमिका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, राजस्थान समेत 6 राज्यों बीचे किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी जी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह री सदारत में हुई मीटिंग में जलशक्ति मंत्री CR पाटिल और 6 राज्यों रा मुख्यमंत्री करार माथे सही कीनी। किशाऊ परियोजना यमुना नदी री खास सहायक टौंस नदी माथे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश री सरहद माथे प्रस्तावित है। करीब 15,000 करोड़ रुपये रा खर्च री इं परियोजनाओं 660 मेगावाट बिजली बनाई जावेला, जिनरो राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने फायदो मिलेला। परियोजनाओं राजस्थान ने 124 MCM पानी मिलेला, जिनने हरियाणा रा हांसीवासियों राजस्थान रा चूरू ताई जमी हेठे पाइप लेन रे जरिए पुगावन री योजना है। एणु सीकर चूरू और झुंझुनू समेत शेखावाटी हल्का माई पीवण और पाणत सारू पानी री जरूरत पूरी करण माई मदद मिलेला। ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माई राज्यां री सहमतियों कई बरसाऊ अटक्योड़ी परियोजनावां रा काम फेरिया है। वह ई करार ने राज्यां रा आपसी सहयोग री मिसाल बतायो।
1: मित्रों हम कह सकते हैं जो दशकों से अटके हुए ऐसे विवाद थे जो सरकार सोचना भी नहीं चाहती थी। क्या आज उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच आज ये किसानों का समझौता इन छह राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन छह राज्यों में प्रगति की मिसाल भी बनेगी। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता।
6: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण जुड़ी लॉटरी निकालबारो काम अब नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी फिया पाछा करियो जावेला। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास विभाग री ओरों जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों सारू लॉटरी निकाल बारी तारीख 17 सितंबर और सरपंच और वार्ड पंच सारू लॉटरी री तारीख 18 सितंबर तय करी ची ही। विभाग रा उप शासन सचिव जसवंत री ओरों आज सगला जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कागज लिखकर आ तिथियां माथे लॉटरी नी निकाल बारा हुक्म दिया चिया। इन बीच राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव रा तहत कुछ मतदान केंद्रा माथे ईवीएम माई तकनीकी खराबी रा कारण ओजू वोट करावन रा हुक्म दीना है। वोट काल समारा 7 से 6 बजे ताई पड़ेला। वोटां नी गिनती 17 सितंबर न करी जावेला। प्रदेश माए मायड़ा नुआ जन्मिया टाबर टाबरियां बच्चा और किशोराओं जुड़ी स्वास्थ्य सेवावां ने और मजबूत बनावन सारू यूनिसेफ इंडिया रा उप प्रतिनिधि जैस्पर मोलर और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बीच आज जयपुर माए बातचीत हुई। मीटिंग माए स्वास्थ्य सेवावां ने बेहतर तरीकाओ जनता ताई पुगावण और नवाचारा ने मोटा पैमाना माथे लागू करण जुड़ी बातचीत करी जी। श्री मोलर प्री सर्विस मेडिकल एजुकेशन माए बच्चा रा अधिकारा री जानकारी शामिल करण सारू कहो, जी पाछे प्रमुख शासन सचिव श्रीमती राठौड़ यूनिसेफ इबारा माए विगतवार जानकारी देवण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियर्स डे रे मौके देश रा सगला इंजीनियरा ने शुभकामनावां दीनी है। वे महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया ने श्रद्धा भाव सागर याद करता थका कहो कि इंजीनियर बेहतर भविष्य सारू निर्माण, नवाचार और समाधान मुहैया करावण माय खास काम करे है। प्रधानमंत्री कहो कि सर एम विश्वेश्वरैया री इंजीनियरिंग प्रतिभा और देश बनावण री दूरदृष्टि सगला ने सीख देवे है।
4: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता।
6: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि सगला सारू न्याय, शांति, विकास और मानवाधिकार प्रति समर्पण लोकतंत्र री सब मजबूत बुनियाद है। वे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस रे मौके आज जयपुर माय राखी जया भारतीय युवा संसद रा 31वां अधिवेशन माय बोल रहा है। श्री बागड़े नौजवानों लोकतंत्र ने मजबूत बनावण रा काम माय सक्रिय भूमिका निभावण सारू कहो। वे कहो कि बातचीत और जनता माय भरोसो पैदा करणु लोकतंत्र मजबूत बने है। राज्यपाल नौजवानों लोकतंत्र रा पहरेदार रा तौरों काम करण बाबत कहो। श्री बागड़े कहो कि लोकतंत्र री परिभाषा माय मानवाधिकार, व्यक्तिगत आजादी और निपक्ष चुनाव खास बिंदु है।
2: एक तय मॉडल नहीं है, हो सकता है कि मैं सभी लोकतांत्रिक प्राणियों में स्वतंत्रता, सभी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानवाधिकार, मानवाधिकार भी है और सभी का सम्मान और निष्पक्ष चुनाव, ऐसा सभी देश ने अपने अपने लोकतंत्र की जो परिभाषा की है उसमें रखा है।
7: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी भारत ने हिफाजत जुड़िया साजो सामान बनावण रो वैश्विक केंद्र बनावण माए खास काम कर सके है। श्री सिंह आज नई दिल्ली माए DRDO इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 माए बोल रहा है। वे कहो कि DRDO मिसाइल, राडार, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां सागे कृत्रिम बुद्धिमता AI रा हल्का मा एक क्षमता साबित कीनी है।
3: EDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
7: जैसलमेर री पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना री ओर रखा जा रहा ड्रोनाथॉन 2026 कार्यक्रम रो आज दूजो दिन हो। 3 दिन रा ई आयोजन रो मकसद असली परिचालन हालात में देशी तकनीकान अबूता री पिछाण करनू है। ड्रोनाथॉन में देश रा मानव रहित प्रणाली हलकाओं जुड़ी 20-32 रक्षा कंपनियां, स्टार्टअप और MSME समेत न्यारा न्यारा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र रा उपक्रम शामिल फैरिया है। प्रदेश में चलाया जा रहा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम रा तहत पाली री न्यारी न्यारी स्कूला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखी गया। पालीरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव विक्रम सिंह भाटी विद्यार्थियों ने बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया रा बेजा इस्तेमाल रे बारा में जानकारी दीनी। सवाई माधोपुर में आई स्कूल माए शिविर लगार न्यायिक अधिकारी बच्चा ने मारा कानूनी हक री जानकारी दीनी। राजस्थान विश्वविद्यालय में न्यारा न्यारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला सारू URATPG रात दूजा दौर में अर्जी देवन री आखिरी तारीख बधा दे रिजी है। विद्यार्थी अब काल सिंजा 4 बजे ताई ऑनलाइन तरीकाओं अर्जी दे सके है। अर्जी रो कागज 17 सितंबर ताई जमा करायो जा सकेला। विश्वविद्यालय री प्रवेश परीक्षा संयोजक डॉक्टर निकी चतुर्वेदी बतायो कि मेरिट रा आधारों दाखिला वाला कोर्स सारूई अर्जी देवन री आखिरी तारीख काल ताई बधा दे रिजी है। स्नातकोत्तर विभाग में दाखिला री पहली लिस्ट 23 सितंबर न जारी करी जावेला। राज्य में 17 सितंबर विकसित भारत जनसेवा अभियान चलायो जावेला। 17 अक्टूबर ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत जनतारी भागीदारी रे जरिए विकसित भारत बनावण रा संकल्प ने आगे बढ़ावण रा मकसद न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जावेला। जैसलमेर री जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल आज अहलकारा सागे मीटिंग कर अभियान रे दौरान करया जावण वाला कामा रो जायजो लीनो और जरूरी व्यवस्थावां टेम सर पूरी करण रा हुकम दीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम रे 138वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। राजस्थान समेत 6 राज्यों बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना सारू आज नई दिल्ली में करार माथे सही करी ची। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव सारू आरक्षण री लॉटरी नगर निकाय चुनाव री प्रक्रिया पूरी भ्या पाछे निकाली जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े न्याय शांति और विकास रा प्रति समर्पण ने लोकतंत्र री मोटी बुनियाद बताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो DRDO और उद्योग जगत बीचे भागीदारी री देश ने रक्षा विनिर्माण रो वैश्विक केंद्र बनावन माय खास भूमिका। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। थोड़ी देर में सुनिए कार्यक्रम जय माला।
9: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
10: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
0: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल

0: की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गाना उदित नारायण की आवाज में है। फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत। गीत समीर का है, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को, फिल्म का नाम था बदलते रिश्ते। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में इम्तिहान फिल्म का गाना। गीत फैज़ अनवर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, यश विहार, स्वर्ण विहार, विप्र विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बगरू ग्रीन्स, द रिंग एवेन्यू, अभयपुरा, अनंतपुरा, ईपला, हर्ष वाटिका, निलय कुंज, रियासत रेजिडेंसी, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, दीनदयाल नगर, विद्याधर नगर, हनुमान नगर, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, गोविंदम आश्रम, खंडवास, आनंद लोक, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आदिनाथ सरोवर, संतोष विला, देहमीकला, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा सितंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है कालिया। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत RD बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत उत्तम सिंह का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, यस विहार, स्वर्ण विहार, विप्र विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बगरू ग्रीन्स, द रिंग एवेन्यू, अभयपुरा, अनंतपुरा, ईपला, हर्ष वाटिका, निलय कुंज, रियासत रेजिडेंसी, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, दीनदयाल नगर, विद्याधर नगर, हनुमान नगर, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करूल एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, गोविंदम आश्रम, खंडवास, आनंद लोक, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आदिनाथ सरोवर, संतोष विला, धर्मिकला, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा सितंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, लीजिए सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है ओ सजना एल्बम से, इसे गाया है नेहा कक्कड़ ने, गीत जानी और ललित सेन का है, संगीत तनिष्क वाक्ची और ललित सेन का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगला गाना यादें एल्बम से सुनिए। गीत संगीत और आवाज है अनुषा रांधवा की।

आइए अब सुनते हैं साकेत सिंह की आवाज में दूरियां एल्बम का गाना। गीत साहिर लुधियानवी का है और संगीत साकेत सिंह और निरंजन का।

अभी आपने साहिल सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुना साकेत सिंह की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं सईद कादरी की रचना। संगीत सचेत परंपरा का है, आवाज़ है गुरु रंधवा की।

आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं मोहम्मद शफी की लिखी झलकी बेढब पड़ोसी। निर्देशक हैं संतोष जोशी।

0: ओ बेगम, मर गया बेगम
1: जी। आई।
0: अरे जरा जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तो पूरी तरह से पंचर हो गया।
1: अरे क्यों चिल्ला रहे हो, दरवाजा खोल रही हूँ। ये लीजिए, खोल गया दरवाजा। हाय अल्लाह, इतना सामान, मैंने तो सिर्फ शक्कर मंगवाई थी, ये गेहूं भी क्यों लिया है?
0: ये गेहूं अपना नहीं है बेगम।
1: आए तो किसका है?
0: ये जो अपने पड़ोसी जहमत खां हमारे हैं ना, उन्हीं का है। जब से आए हैं कभी उन्हें बाजार जाते नहीं देखा है, रोज किसी न किसी बहाने अपना सामान मुझसे बुलवा लेते हैं।
1: हाय अल्लाह, काला मुंह इनका। आप तो घर का सामान लाने से कतराते हैं, लेकिन वो मुआ आपसे वजन लदवा ही लेता है। तभी तो मैं सोच रही थी कि आपको खाना क्यों नहीं लग रहा है, कितनी तंदुरुस्ती गिर गई है जी आपकी।
0: वो तो ठीक है बेगम, ये लो शकर, संभाल कर रखो, देखो कहीं एक दाना भी न गिरने पाए।
1: ये मुई शक्कर क्या हो गई, जैसे कि बड़े घर की बहू, बहुत ही हिफाजत से रखना पड़ता है।
0: तुम करो शक्कर साहेबा की हिफाजत और मैं चला जहमत खां के घर। दे आऊं ये जहमत मियां। ओ जहमत मियां, ओ भाईजान, भाभी।
2: अरे मुबारक मुबारक, वो आ गया।
1: अरे कौन आ गया?
2: अरे धीरे बोलो, वही अपना शागिर्द रमजान मियां। अब बेचारा कितना फरमा बदार है।
0: अरे भाईजान
2: आया, भाई आया आया। आओ आओ रमजान भाई, भाई मैं तुमको रोज ही कुछ ना कुछ जहमत देता रहता हूँ।
0: क्यों शर्मिंदा करते हैं भाईजान, ये तो मेरा फर्ज है।

0: Adam.
1: Adam. Adam. बेगम बेगम जरा देखना जहमत मियाँ का दरवाजा बंद है या खुला।
2: बंद है, बंद। जल्दी से निकल जाइए वरना कोई ना कोई जहमत पकड़ा देंगे।
1: ठीक है, चलता हूँ।
2: जाओ जाओ।
1: आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे मर गया, फिर फंसा। मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। हाँ
3: अरे चुप के कहाँ चल दी है रमजान मियाँ?
1: जी वो मैं घी लाने जा रहा था।
3: घी? अरे तो अपनी भाभी जान से नहीं मिलोगे।
1: जरा जल्दी में था, बात यह है कि आज हलवा खाने का इरादा हो गया था। वो कल शकर पीली है ना, बेगम ने घी का हुक्म फरमा दिया। मैंने उनसे कहा कि आप स्टोव जलाइए, मैं अभी घी लेकर आया।
4: भाई जान, एक कप चाय तो पी जाइए।
1: नहीं भाभी नहीं, फिर पी लूंगा मैं, देर हो जाएगी तो बेगम की बातें सुननी पड़ेगी।
4: अरे मैं उन्हें समझा दूंगी, आइए दो मिनट में चाय तैयार करके लाइए।
3: रमजान मियाँ इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्या बेगम से बहुत डरते हैं? मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं जी, डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ, बस सिर्फ एक बात से डर लग रहा है।
3: बताओ बताओ कौन सी बात है रमजान मियाँ?
1: जी सारी जिंदगी साथ गुजारनी है इसीलिए डरता हूँ। भाभी जी जरा जल्दी कीजिए ना।
4: ये लीजिए, बस इतनी सी देर के लिए घबरा रहे थे।
1: अरे वाह, एक गिलास में, वाह वाह वाह।
3: चाय पीजिए।
1: ये तो बहुत गर्म चाय है,
3: मजा आया।
1: भाभी जान एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी?
4: हाँ हाँ फरमाइए ना।
1: आप लोगों को शक्कर से परहेज तो नहीं है?
4: क्यों?
1: इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
4: कहीं जा रहे हैं भाईजान सुबह सुबह?
1: अबे घी लेने।
4: बड़ी अच्छी चीज खरीदने जा रहे हैं, हम लोगों को इसका दीदार किए अरसा हो गया। क्या हलवा खाने का इरादा है?
1: हलवा? हाँ हाँ भाभी जान।
4: आपके भाईजान तो हलवा वलवा पसंद ही नहीं करते, आज तो मुर्ग मसल्लम खाने का इरादा कर रहे हैं। यहाँ पर कहाँ मिलता है भाईजान?
5: अब वो रही दुकान सामने भाभी जान, वो कोने पर।
4: आपके भाईजान को तो किसी ने बता दिया है वहाँ अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा भाईजान, राजीपुरा कहाँ पर है?
1: राजीपुरा? भाभी जान वो तो यहाँ से 2 मील दूर है।
4: तो ये ले लीजिए अपने भाईजान की साइकिल और मेहरबानी कर दीजिए ना आज। आपके सिवा यहाँ हम लोगों का हमदर्द और कौन है? आप ही के सहारे तो हम लोग यहाँ पड़े हैं।
3: जी हाँ।
1: फिर फंस गया आज, कैसे मना करूं?
3: रमजान भाई
1: चलो आज बेकार कर ही देते हैं, इसके बाद तो साफ साफ मना कर दूंगा।
3: क्या बात है रमजान भाई?
1: नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सोच रहा था कौन सी साइड से जाऊं। लाइए भाभी जान पैसे और थैला दे दीजिए। जाता हूँ मैं।
3: शुक्रिया।
1: जाता हूँ।
3: शुक्रिया। कितना अच्छा आदमी है बेटा।
4: हाँ, दूसरों से काम लेने का तरीका भी तो आना चाहिए।
3: अब बजा फरमाती हैं बेगम।
4: इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? रवा तो भूनते भूनते जल गया, अब क्या खाक बनाए?
1: अरे बेगम क्या बताऊं, मनहूसों ने पता नहीं कैसे मुझे देख लिया और दे दी बेगार। मैं तो उनसे बचने की दुआ मांगता हुआ जा रहा था कि अचानक दरवाजा खोलकर मुझे बुला ही लिया।
4: फिर बुला लिया?
1: हाँ बेगम क्या बताऊं, गिद्ध की तरह देखते ही रहते हैं, मैं कब निकलूं और काम बताएं।
4: मुंह काला हो इन मुंहों का, मैं तो मिन्नत मान लेती हूँ कि जल्दी इन लोगों का मुंह यहाँ से काला हो, जब से आए हैं आराम चैन सब नदारत हो गए हैं।
1: देखो ना बेगम, कितने शौक से हलवा खाने का प्रोग्राम बनाया और ये कबाब में हड्डी बन गए, या खुदा। देखो तो बेगम।
4: क्या देखूं?
1: जहमत मियाँ का दरवाजा खुला या बंद?
4: क्या फायदा है, देखने से अगर बंद भी होगा तो आपको देखते ही खोल देंगे दरवाजा।
1: देखो बेगम देखो, बस आज का दिन और है, उसके बाद ये भूल जाएंगे बेगार दिन। आज तो मैं दरवाजा खुलते से ही कह दूंगा कि मैं नहीं लाऊंगा।
4: आप और मना कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं भी आपके साथ चलती हूँ और आज सुना देती हूँ उन्हें खरी खरी।
1: नहीं, नहीं।
4: क्या समझ रखा है इन लोगों ने, जब देखो तब कुछ ना कुछ बेगार देते रहते हैं, सारी खुशियों पर पानी फेर रखा है। घर से आपको भीगी बिल्ली की तरह निकलना पड़ता है।

0: नहीं तो...
1: नहीं बेगम नहीं, तुम बिल्कुल मत जाना, मैं ही निपट लूंगा। आज तो उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि हुक्म बजाना भूल जाए।
0: आप तो रोज ही ऐसा कहते हैं, चलिए आज फिर देख लेते हैं आपकी हिम्मत।
1: तो चलूं बेगम, ठीक है। आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू। लाहौल विलाकुत। अरे फिर देख लिया ज़हमत मियां ने, अब क्या होगा, अब क्या होगा।
2: अरे रमजान मियां, बहुत जल्दी में जान पड़ते हो, क्या अपना दीदार नहीं करवाओगे?
1: वो क्या बात थी कि याद, जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगा।
2: अरे खैरियत तो है, कहीं भाभी जान से लड़कर तो नहीं भागे जा रहे हो?
1: अरे लड़े हमारे दुश्मन ने, मैं तो यूं ही आज जल्दी में हूँ।
2: अरे बेगम।
0: हाँ, अरे हाय हाय, कहाँ चल दिए भाई जान, क्या एक कप चाय मेरे हाथ के नहीं पियेंगे?
1: भाभी जान, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर पी लूंगा।
2: अरे भाई, अपनी भाभी को नाराज मत करो, मान लो इनकी बात और पी भी लो एक कप चाय।
1: जी नहीं जी नहीं जी नहीं भाई जान, मैं बहुत जल्दी में हूँ, माफ कीजिएगा भाभी जान, मुझे माफ तो माफ कीजिएगा।
0: अरे कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं?
1: ओफो, बताने लायक नहीं है भाभी जान।
0: अरे बताइए तो, हो सकता है हम लोग कुछ काम आ सके।
1: काम? ठीक है ठीक है, बताता हूँ भाभी जान। ज़हमत मियां, इधर कान इधर लाओ।
2: बताइए।
1: सुनो भाभी जान, आप भी नजदीक आ, जल्दी से 200 रुपए निकालो।
2: 200 रुपए क्यों?
1: अभी अभी खबर मिली है कि चाहे जितनी शकर ले लो, बिल्कुल आधे दामों पर। बोलो बोलो, कितनी लाऊं कितनी लाऊं?
2: अरे वाह भाई बेगम।
0: भाईजान, ये ना 200 रुपए, जितनी मिले ले आइएगा।
1: ठीक है ठीक है, लाओ, अभी लाया अभी लाया। आप लोग बिल्कुल दरवाजा खोलकर तैयार रहिएगा,
2: जल्दी आइएगा। अरे बेगम,
0: क्या है?
2: वो आ रहे हैं रमजान मियां, वो आ रहे हैं। आइए आइए रमजान मियां, आइए। ये उतरी उतरी सूरत।
0: हाँ?
2: भाई थैला कहाँ है?
1: थैला? अरे कौन सा थैला?
2: अरे शक्कर का
1: है? अरे शक्कर? ज़हमत मियां, बड़ा गजब हो गया।
0: क्या हो गया?
1: यहाँ से चला तो शकर की लाइन में जेब कट गई।
2: हाँ
1: जेब।
0: क्या होगा?
1: सारे के सारे रुपए चले गए।
2: तुम्हारी जेब कट गई?
1: हाँ,
2: तुम्हारी जेब?
1: हाँ,
2: जिसमें मेरे रुपए रखे थे।
1: वही वही वही, तभी पता चला कि शकर चोरी की थी।
2: ए?
1: तो मुझे पकड़ लिया, बोले क्यों खरीद रहे हो? तो मैं तो भाईजान अपने लिए तो खरीद नहीं रहा था, आपके लिए खरीद रहा था, आपका नाम लिखा दिया।
2: क्या गजब किया तुमने।
1: लेकिन अब सुनते हैं कि खरीदने वालों को भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि चोरी की चीज बेचना और खरीदना दोनों अपराध हैं कहते हैं।
2: दोनों अपराध हैं रमजान मियां, अब क्या होगा?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, 6-7 महीने के लिए अंदर हो जाना पड़ेगा।
2: अंदर? अरे हम तो बेगम आज ही ये मोहल्ला छोड़ देंगे,
0: अभी छोड़ देंगे,
2: कभी इस मनहूस गली की तरफ मुंह नहीं करेंगे।
0: अरे कहाँ है आप, कहाँ है?
1: क्या हुआ बेगम?
0: अभी कोई इधर से ये कहते हुए आ रहा था कि ज़हमत मियां कहाँ रहते हैं, आपको पूछ रहे थे ज़हमत मियां आपको। देखो आप कह देना भाईजान, ज़हमत मियां यहाँ नहीं रहते।
2: नहीं रहते,
1: ऐसा कह दो बेगम। अब ज़हमत मियां को बचाना है तो कहना ही पड़ेगा। कह देंगे हम, बचा लेंगे, लेकिन वादा कीजिए कल से मुझे कोई काम नहीं बताएंगे।
0: पक्का वादा किया भाईजान,
2: पक्का वादा किया,
1: नहीं बताएंगे ना।
2: वादा किया।
0: चलो जी चलो, वो हलवा तैयार हो गया है।
1: अरे आज हलवा बना लिया? चलो चलो,
2: ठहरो ठहरो।
1: ज़हमत मियां, भाभी जान, आइए हलवा खाइए।
2: नहीं,
0: हमें शक्कर से परहेज।
2: हमें शक्कर से परहेज।

बिढ़ पड़ोसी, अभी आपने मोहम्मद शफी की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे संतोष जोशी। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है बप्पी लहरी, अनुराधा पौडवाल और बादशाह ने। गीत इंदिवर का है, संगीत तनिष्क बागची का।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए अब सुनते हैं तड़प फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत इशाद कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: एक नई खुशी।
1: JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, यस विहार, स्वर्ण विहार, विप्र विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चितन विहार, अनुपम विहार, बगरू ग्रीन्स, द रिंग एवेन्यू, अभयपुरा, अनंतपुरा, ईपला, हर्ष वाटिका, निलय कुंज, रियासत रेजिडेंसी, ट्रांसपोर्ट नगर, मुहाना, दीनदयाल नगर, विद्याधर नगर, हनुमान नगर, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, गोविंदा आश्रम, खंडवास, आनंद लोक, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आदिनाथ सरोवर, संतोष विला, दहमीकला, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा सितंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स फिल्म का गाना। गीत राजशेखर का है, संगीत कृष्णा सोलो का।

अभी आपने अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ों में ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था। आइए अब सुनते हैं धड़क 2 फिल्म का गाना विशाल मिश्रा की आवाज़ में। गीत रश्मि विराग का है, संगीत जावेद मोहसिन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 अरब करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
7: We need to develop sports infrastructure.
8: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
7: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
9: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIR News हिंदी और पब्लिक पर @AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ

मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल के इस गाने के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं चित्रोर फिल्म का गाना। यशुदास और हेमलता की आवाजों में गीत संगीत रवीन जैन का है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म का गाना। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिन का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रवींद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से MBA किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छप कर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए। ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

ये अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोंधी मिट्टी की सुगंध है प्यार, ठंडी पुरवाई है प्यार, बसंत की नवोदित कलियां है प्यार, भावनाओं की नदी है प्यार, सितार के तार से झंकृत मीठी धुन है प्यार, धूप की तपिश के बाद ठंडी छांव है प्यार, प्यार एहसास है, प्यार नीम है, गुलाब है, बेला है, चंपा चमेली है प्यार।

प्यार के शबिस्ता में सिर्फ खुशियों की कलियां ही नहीं चटकती, दर्द का सैलाब भी उमड़ता है। प्यार के सागर में दो बूंद खारा नमक भी घुल जाता है। जब प्रतीक्षा के पल ठहर जाएं, टीस भी उठती है मन में। प्यार के मौसम में आए दर्द की आंधी या बहे टीस का झरना, भला किसे परवाह।

सुंदर सी दुनिया प्रेम की, फिर अकुलाहट क्यों, फिर ये बेचैनी क्यों? बेचैन मन कहता है कुछ पहाड़ों से, नदियों और झरनों से, फूल पर मंडराती तितलियों से, हाथ में उल्टा आईना पकड़कर आसमान को उल्टा अपने सामने देखा। ये सब मुमकिन है प्यार की दुनिया में।

प्यार तूफान है, आंधी है, इसका नज़ारा साहिल से नहीं बल्कि पानी में उतर कर जाना जा सकता है। सागर की गहराई है प्यार, करता है प्यार कोई तो बदल जाता है उसका मन, बदल जाती है दुनिया, पूरी कायनात का नज़ारा कुछ और ही हो जाता है जब जिया जाता है प्यार के पलों को।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। स्मृतियों का गुलमोहर खिला है, लम्हों के पलाश छतनार हुए हैं, प्यार की रात रानी महक रही है। रेडियो से आप सुन रहे हैं छाया गीत। हम कर रहे हैं गुफ्तगू उनसे जिन्होंने भेजी है प्यार की सौगात।

उसकी खामोशी के खजाने से चुन रहे हैं कुछ शब्द। बारिश की महीन झींसी की मानिंद सुहानी लगती है उसकी अनकही बातें। वो है कोई इंसान या फरिश्ता या कोई फंतासी, कौन पड़े इस भरम जाल में। सिर्फ महसूस करते रहें उसके धरती से आसमान तक फैले विशाल प्यार को।

कहा कुछ उन्होंने, सुना कुछ दिल ने, बन गया प्यार का अफसाना। खूबसूरत लम्हों को तह कर संजो लिया है दिल की अलगनी में, आंखों के सामने सिर्फ प्यार की दुनिया है।

एक जमाने में प्यार का इजहार करना बड़ा मुश्किल होता था। चिट्ठियों के जरिए या गानों के जरिए प्यार का इजहार किया जाता था। सूचनाओं संदेशों के युग में जीने वाले लोग क्या जाने प्यार के इजहार के सही मायने क्या होते हैं। अपनी प्यार भरी बातें गानों के साथ जोड़कर करते हैं इजहार कुछ यूं।

0: आवाज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

चिंता न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की। इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक। दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया कर।

दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

तुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना, वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, ओ दिल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं और अब से बस थोड़ी देर में सुनिए हिंदी में समाचार। सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः